नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही साथियों, हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।

Chapeau!

0: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
0: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
0: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
2: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
3: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
0: शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
2: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
5: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
2: वागधारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनो ने आपने बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनो घणेमान स्वागत करो हो अमारे आजने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिमकी भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई सह कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो भाई बुनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है के पशुपालन आपणे करो हो तो एनो हुं व्यावसायिक लाभ आपणे लेवासु ने। तो भाई बहनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप थकी घणा कानी वाते थाईंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहला आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपणी वाते। तो भाई बहनो आप हमरते रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8।

जो अपने प्रमुख जो पशु हैं, जिसमें कि किसान कुछ व्यावसायिक लाभ लेकर उनका पालन भी करता है और उसके साथ में उसके अपना भी फायदा करता है और पशुओं के भी फायदा करता है। तो ये ऐसे पशु होते हैं जिसको अपन कैटल भी कहते हैं, है ना, कैटल जिसको कहते हैं। तो ये ऐसे पशु होते हैं जो किसान के मित्र भी होते हैं, किसान को उसका पैसा भी मिलता है और बदले में वो किसान को खेत को मिट्टी को वातावरण को बहुत कुछ देते हैं। तो इसमें जब अपन व्यवसाय की बात करें ना, तो इसमें ज्यादा इसमें प्रमुख रूप से जो हम ये मानते हैं कि भाई गोपालन, जिसमें हम जैसे गौशाला वगैरह कहते हैं, यानी गाय का पालन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। गाय का अपन हमारे जो भारत के अंदर मानते हैं कि हमारी गौ माता क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि गाय के पालन से हमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। गाय से हमें दूध भी मिलता है। गाय का प्रत्येक जो है गौमूत्र है गोबर है के आसपास रहने से उसके वातावरण में यानी बहुत फायदा होता है। जैसे अपन कहते हैं गाय का दूध पूरी तरह से देसी गाय है तो उसका पोषण युक्त होता है। गाय के दूध के अंदर विटामिन ए भी होता है और कई सारे और भी विटामिन बी का भी है, पार्ट कैल्शियम भी देता है, फास्फोरस देता है। तो ये गाय का दूध हमारे लिए अपने पोषण के लिए भी फायदा करता है। और गौ पालन गौ बदले में हमें गौमूत्र भी देती है। गौमूत्र है एक गाय, अपन कहते हैं देसी गाय, एक अनुमान है कि माना जाता है कि सब एक गाय प्रतिदिन 3 लीटर गौमूत्र देती है। और गोबर की है, गोबर का भी माना जाता है क्योंकि ये जो गोबर है वो भी हमारे खाद के लिए प्रयोग में आता है। गौमूत्र प्रयोग खाद में प्रयोग आता है। गोबर का प्रयोग जैसे अपन कहते हैं देसी खाद बनाना, FIM जो कहते हैं ना, फार्म यार्ड मैन्योर, तो उसको बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। उसको बनाने के लिए गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। गोबर अगर गाय का अपन कहते हैं तो पर डे लगभग 10 किलो का आसपास एक गाय गोबर करती है।

0: कुछ पौधे के जो अवशेष होते हैं उसकी मात्रा और इनका सबका अपघटन करते हैं पानी के मिलाकर, और उसका अपघटन करके क्योंकि इसमें जो जीवाणु होते हैं उसमें जीवाणु पनपते हैं और वो गोबर को विघटित करते हैं। गोबर को विघटित करके वो इस तरह की खाद बनाते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है, पोटेशियम भी मिल जाता है। इसे जो अपन कहते हैं FIM, देशी खाद। देशी खाद इसीलिए कि वो जब मिट्टी के अंदर उन खाद को मिलाया जाता है तो मिट्टी की पोषण तक जो बढ़ जाती है। तो इस रूप में गाय हमारे लिए व्यावसायिक रूप से काफी लाभदायक होती है, क्योंकि गाय जैसे भी अपन बता रहे हैं कि जब 10 किलो तो लगभग गोबर की दे रही है, 2.5 से 3 किलो गोमूत्र दे रही है और उससे देशी खाद बन रही है, और साथ में इसके प्रयोग से हम कई सारे जीवाणु खाद भी बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जीवाणु खाद में, क्योंकि जीवाणु का रहने का वो स्थान है। तो जैसे उसमें अपन कितने सारे ये जो कहते हैं ना कि भाई अपन ऐसी जीवाणु खाद बनाते हैं कि जिसमें कि कई बार बीज के उपचार के लिए भी काम आती है, कई बार पौधे के ऊपर छिड़काव के लिए भी काम आती है, कई बार उसमें जो अपने कीट लगते हैं पौधों के ऊपर उनको बचाव करने में, उनको नियंत्रित करने में भी वो काम आती है। तो इस तरह से गाय हमारे लिए सब तरह से काम आती है। गाय के साथ में हम जब कहते हैं बेल हमारे लिए सर्वविदित है कि बेल हमारे किस तरह से श्रम में लाभ देता है हमारे, जो क्योंकि अगर बेलों के पालन से हम जाते हैं कि बेल जोड़ी अगर हमारे पास है तो हमारे जितने भी खेती बाड़ी के कार्य है जैसे कि हल चलाना, निराई गुड़ाई करवाना, उसमें उसके ऊपर अपने गहाई करवाना, अपना अनाज निकलता है तो उसको किस तरह से कुटवाना, तो ये सारे बेलजोड़ी के काम होते हैं उसमें करते हैं। फिर बेल का जो ऊर्जा है उसको हम कुएं में से पानी निकालने के लिए भी काम में लेते हैं, और हमारे उसके बाद में जो जैसे कहते हैं अपन तिल में से घाणी वगैरह होते हैं ना, तो उसमें भी बेलों का प्रयोग किया था। तो ये हमारे डेली किसानों की लाइफ के अंदर डेली इन पशुओं का बहुत बड़ा रोल होता है और इनका प्रति

जीव है और शाकाहारी जीव हमारे साथ में भी रह रहे हैं, हमारा लाइफ के अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, उनका दूध से उनके जो भी अवयव हैं, उनके जो भी पदार्थ हैं, उसका हम निकलते हैं। डेयरी का अपन जानते हैं कि

0: इसी तरह से बेल का भी जैसे अपन ने बात करी कि बेलों का भी काफ़ी लाभ होता है, तो इस तरह से हम मोटे रूप में इन व्यवसाय का लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। जैसा कि आपने बताया कि पशुओं में गाय और बैल से किस तरीके से हमें फायदे होते हैं, वही हम देखते हैं कि बहुत से किसान भाई बहन मुर्गी और बकरी पालन भी करते हैं, तो उनसे उन्हें क्या व्यवसायिक लाभ होता है?
0: मुर्गियों और बकरी का पालन का, जैसे मुर्गियों से भी अब जैसे अपन मानते हैं कि अंडे वगैरह का प्रयोग करते हैं, वो भी एक विटामिन का बहुत बड़ा सोर्स होता है।
1: जी हाँ।
0: विटामिन ए है, विटामिन कैरोटीन से मिलता है जो काफी लाभदायक होता है। ऐसे बकरी का भी है, बकरी का भी दूध है, बकरी की जो खाद बनती है मेंगड़िया वगैरह है वो भी खेतों के उपजाऊ क्षमता बनाने के लिए काफी लाभदायक होती है। उससे क्या, और उससे वातावरण में भी काफी लाभ रहता है, उससे जो गर्मी है उनसे भी मिट्टी के अंदर जो एक वो उर्वरता बनी रहती है, तो इनसे काफी हमें किसान भाइयों को लाभ मिलता है। बकरी है, भेड़ है, इसी तरह से अपने मुर्गियां हैं, तो ये पालन से किसान को व्यावसायिक लाभ तो होता ही है और साथ में वातावरण का भी लाभ होता है, मिट्टी का भी लाभ होता है। और जैसा कि अपन बताया कि ये सब हमारे जनजीवन के पार्ट हैं, इसलिए अपन कहते हैं कैटल्स हैं ये, डोमेस्टिक कैटल्स हैं, किसानों के मित्र हैं ये।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि पशुओं से हमें कई सारे लाभ होते हैं, यही पशुपालन करते समय हमारे किसान भाई बहनों को इन पशुओं के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
0: पशु का अपन जैसे कह रहे हैं कि भैया हमारे लाइफ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो इनकी बीमारी और इनके जो रख रखाव इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह जीव है, तो उसमें भी अगर कोई बीमारी लगती है तो उसको हमारे वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। उनके अंदर समय समय पर टीके लगते हैं, कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है जैसे खुरपका रोग है जैसे गायों के अंदर, तो इसमें उनके पैरों के अंदर वो हो जाता है, तो उस वजह से उनके नुकसान होता है, तो ऐसे उनके टीके होते हैं। जैसे अपने बच्चों का लालन पालन होता है, बच्चों के समय समय पर टीके लगते हैं, तो ऐसे एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर्स होते हैं पशु चिकित्सक, उनका परामर्श से हम इस तरह से टीकों का प्रयोग करते हैं। उनके रख रखाव में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके जहाँ रहने का जगह है
1: बिल्कुल
0: उसमें एक अच्छा खासा उनका वातावरण बनाया जाए, ऐसा तो नहीं कि उसमें गीला वगैरह हो रहा हो, इससे उसमें को रहने की उसमें दिक्कत आए। जितना भी नमी बनी रहेगी उसके कमरे के अंदर या उसके जब बांधने की जगह पे अगर बहुत ज़्यादा नमी है तो उसमें ऐसे जीवाणु पनपने का होता है जो पशुओं को नुकसान देता है। पशुओं को नुकसान होगा तो उसकी दूध की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी, उसको हमारे जो परिवार है उसमें भी उसकी बीमारी फैलने का खतरा रहता है, इसलिए उसका रख रखाव और उसकी बीमारी वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि किस तरह से उनका जो आहार का जो पर कहते हैं मैंजर जो कहते हैं वो भी ऐसा होना चाहिए कि उनको जो आहार दें वो जो चारा दें वो भी हम अगर सीधा सीधा कई बार क्या होता है सीधा मक्की की कड़वी वगैरह है तो वो पूरे पूरे डंठल पकड़े दिए थे तो डंठल उसको खिला दिए थे तो वो पूरी तरह से उसका वो पछता नहीं है, उसको पछता नहीं है और वो सारा सा बेकार चलाता है। इसलिए कहा जाता है कि साहब वो कुट्टी करके काट के उनका चारा बना के डाला जाए और उसको भी अच्छे से पोषण वाला चारा दिया जाए, उसमें भी चने की भूसी है, दालों की भूसी है वो भी मिलाई जाए, दूसरी मक्का की कड़वी मिलाई जाए दूसरे इस तरह से, ताकि उनके अंदर जो पोषण की कमी जानवरों में भी ना हो। तो ये इन चीज़ों का ध्यान, मतलब उनके खाने का ध्यान रखना जरूरी है, उनके पानी पीने का ध्यान रखना जरूरी है, उनके रहने के स्थानों को ठीक करना जरूरी है और उनकी बीमारियों के लिए निरंतर हमें पशु चिकित्सक का परामर्श जरूरी है, ताकि उनकी कोई बीमारी आ रही है कोई रखने में दिक्कत आ रही है तो हमें उसको तो कि जिस तरह से अगर हम उनको अच्छा रखेंगे तो हम जो दूध प्राप्त करेंगे वो भी हमारा उच्च क्वालिटी का होगा,
1: बिल्कुल
0: हमारे जनजीवन में भी उसमें आसानी रहती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से हमें अवगत करवाया है, तो सर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद
1: ભાઈન પુનુ જેમ કે આપણે આપણે વેસમે રોકડિયાજી સર જોડે તક હતો ને એણે આપણાને ઘણા કાની વાતે વતાડી હે કે હર તે કયા કયા લાભ હે જે આપણે પ્રાપ્ત કરીને આપણી આયને વધારી શક ને એને સાથે એણે આપણાને ઘણા કાની વાતે વતાડી હે કે કઈ કઈ વાતનું આપણને ધ્યાન રાખવું હે ને પશુઓને પાલન કરતે ટાઈમ એણાનું આહારનું એણાને રહેવાનું જે ઠેકાણું હોય એનું આપણને હર તે ધ્યાન રાખવું હે તો આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમ કે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનો તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીત મોરે પડ સૂટા ડોલા ડોલા ડોલા

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है,
1: खेलने कूदने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है।
4: आओ ले सामाजिक एकता का संदेश।

0: समाज की तरक्की का यही है विकल्प। कोई भी बच्चा ना छूटे इस बार शिक्षा पर है सबका अधिकार। वाग्धारा संस्था एवं वागर रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्चों के अधिकार।
2: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
0: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
3: बिल्कुल सही। सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी है बच्चों के अधिकार।
0: वाग्धारा संस्था और वागर रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है स्कूल बस की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के नियमों को लेकर। आज के समय में

0: की भी सामूहिक जिम्मेदारी होती है।
1: बिल्कुल,
0: आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरीके से कुछ सुरक्षा के नियम हैं जो हमारे बच्चों को पता होने चाहिए ताकि वे खुद की सुरक्षा कर सकें।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि जी, हमारे श्रोता साथियों से हम इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें आगे जरूर करेंगे, लेकिन जैसा कि हम दोस्तों को पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है,
0: बिल्कुल,
1: तो

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्कूल बस की सुरक्षा नियम और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल बस बच्चों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक परिवहन का एक माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: यह ट्रैफिक के दबाव को कम करती है अंजलि जी, बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाती है और माता पिता की चिंता को भी कम करती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अगर सुरक्षा नियमों का पालन न किया जाए तो यही बस दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल बस से जुड़े कुछ सामान्य खतरे हैं जिनके बारे में माता पिता को पता होना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि बस में चढ़ते उतरते समय गिरना, तेज गति या लापरवाही ड्राइविंग करना, सड़क पार करते समय दुर्घटना होना या फिर बस के अंदर अनुशासनहीनता होना, साथ ही ड्राइवर का ध्यान भटकना।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इन सभी खतरों को समझना और उनसे बचाव करना आज के समय में बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि स्कूल बस सुरक्षा के क्या नियम हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए होते हैं।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, इसके लिए ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए, उसे बच्चे के साथ व्यवहार की समझ होनी चाहिए, उसे ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, बस की गति निर्धारित सीमा में होनी चाहिए और स्कूल क्षेत्रों में धीमी गति अनिवार्य हो।
0: बिल्कुल।
1: ब्रेक, टायर, लाइट, इनकी नियमित जांच हो। इसी के साथ बस में प्राथमिक उपचार का बॉक्स भी होना चाहिए। श्रोता साथी, छोटे बच्चों के लिए एक अटेंडेंस होनी बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके कि बच्चों की संख्या कितनी है और कितने बच्चे बस में सवार होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वह बच्चों को चढ़ने उतरने में भी मदद करे। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हमें घर पर बच्चों को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी देने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा चंचल और नटखट होते हैं। बहुत सी बार ड्राइवर कंडक्टर के बहुत ज्यादा ध्यान रखने के बावजूद भी बच्चे जो है इधर उधर धक्का मुक्की कर देते हैं, चलती बस से एक सीट से उतर कर दूसरी सीट की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें बच्चों को समझाना है कि जब बस चालू हो जाती है तो उसके बाद हमें हमारी सीट से नहीं हिलना है।
0: बिल्कुल।
1: खिड़की से मुंह भी बाहर नहीं निकालना है, हाथ भी बाहर नहीं निकालना है। कुछ ऐसी कशी चीजें होती हैं जो बच्चों को हमें दिखानी भी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं बस से स्कूल जाएं तब उन्हें पता चले कि बस के क्या नियम है और किस तरीके से उनका पालन करना हमारे लिए जरूरी होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें अब कि बच्चों के लिए सुरक्षा नियम क्या है, जैसे कि बस स्टॉप पर अनुशासन। दोस्तों, समय से पहले बस स्टॉप पर बच्चों को पहुंचाना जरूरी होता है। सड़क से दूर खड़े रहना और धक्का मुक्की न करना हम बच्चों को बताएं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही बस में चढ़ते और उतरते समय सावधानी भी जरूरी है। जैसे कि हम बच्चों को ये बताएं अंजलि जी कि जब बस पूरी तरह रुक जाए उसके बाद ही बस में हमें चढ़ना है।
1: जी जी।
0: साथ ही लाइन बनाकर चढ़ना उतरना है, सीट पर बैठकर ही यात्रा करनी है, खिड़की से हाथ सिर बाहर नहीं निकालना है जैसा कि आपने बताया था, और साथ ही कंडक्टर या फिर ड्राइवर को परेशान भी नहीं करना है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही बस के आगे पीछे भाग भाग कर कह सकते हैं कि सड़क पार नहीं करनी है, और हमेशा उतरते और चढ़ते समय बड़ों की मदद लेनी है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जैसा कि आपने बताया अंजलि जी कि बच्चे नटखट होते हैं, वो कई बार कुछ चीजें अपने हिसाब से करना ज्यादा पसंद करते हैं।
1: जी जी।
0: तो ऐसे में माता पिता के द्वारा बच्चों को बताया जाना चाहिए कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें बड़ों की मदद भी लेनी होती है।
1: बिल्कुल।
0: और स्कूल बस में यात्रा करना एक ऐसे ही कह सकते हैं कि चीज है जिसमें बड़ों की मदद की जरूरत होती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुन ले।

0: चाहिए, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटी कहानी को जानते हुए, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। कशिश्वर रोज स्कूल

0: ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए। कुछ दिन बाद उसी जगह एक और बच्चा बिना देखे सड़क पार कर रहा था, तभी राहुल ने उसे रोक लिया। इस तरह एक छोटी सी सीख कशिश एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी,
0: श्रोता साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सुरक्षा के नियम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी होते हैं। अगर कुछ नियमों की जानकारी हमें है, कुछ नियमों की जागरूकता हमारे अंदर है, तो ये सारी चीजें हमें अन्य बच्चों को भी बतानी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सुरक्षा पहले जल्दी बाद में, नियमों का पालन करना ही जीवन की रक्षा है।
1: जी हाँ,
0: सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा कहलाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्कूल बस सुरक्षा केवल नियमों की एक सूची नहीं है बल्कि जीवन की रक्षा का एक मजबूत आधार है। साथियों,
0: बिल्कुल
1: हमारे लिए समझना जरूरी है कि हर बच्चा अपने परिवार के लिए अनमोल है और उसकी सुरक्षा का किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। अंजलि जी, जब एक ड्राइवर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाता है और एक शिक्षक बच्चों को अनुशासन सिखाता है, साथ ही एक अभिभावक बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हैं और स्वयं बच्चे नियमों का पालन करते हैं, तभी एक सुरक्षित वातावरण बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये भी समझना होगा दोस्तों कि सुरक्षा एक आदत है जो बचपन से ही सिखाई जाती है। अगर बच्चे शुरू से ही नियमों का पालन करना सीख जाएंगे तो वे जीवन भर सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनकर रहेंगे। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि स्कूल बस हो या जीवन का कोई भी रास्ता, हम हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सुरक्षित बचपन ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि बच्चों की हंसी में खुशियों का संसार होता है, उनकी सुरक्षा में ही जीवन का सार है। नियमों का पालन, सावधानी का साथ, यही है सुरक्षित भविष्य की राह। बस में बैठो शांति से, मत करो शोर, सुरक्षा अपनाओ यही है जोर, छोटी छोटी बातें बड़ा काम करें, हम सब मिलकर सुरक्षित जहां बनाएं। क्योंकि श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बस की सुरक्षा हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सी बार अनजाने में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से माता पिता जो हैं बहुत ज्यादा अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी के समय में परेशान हैं।
1: बिल्कुल,
0: किस तरीके से बच्चों को स्कूल भेजे, बस में क्या होगा, कैसे होगा, तो इन सारी चीजों के लिए हमें कुछ सुरक्षा के नियम है वो अपनाने होंगे।
1: जी जी,
0: हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर तो भेजना ही होता है, ऐसे में इन सारी चीजों का ज्ञान हमारे बच्चों को सुरक्षित बना सकता है। हमें ये समझना होगा कि दुर्घटनाएं अचानक नहीं होती बल्कि छोटी छोटी लापरवाही का परिणाम होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम चल

0: का अर्थ केवल दोस्तों खुद को बचाना नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करना भी है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को सावधान करता है, जब एक अभिभावक दूसरे बच्चे की चिंता करता है, जब समाज मिलकर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, तभी एक सुरक्षित वातावरण तैयार होता है। इसलिए एक सुरक्षित सफर केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं होता है साथियों, बल्कि उस सफर में हर पल को सुरक्षित संतुलित बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: यदि हम आज से ही इस दिशा में कशिश कदम बढ़ाते हैं तो आने वाला कल न केवल सुरक्षित होगा बल्कि आत्मविश्वास और जागरूकता से भरा हुआ भी होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों न हमारे दोस्तों को एक प्यारा सा गीत हम सुन

0: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: बिल्कुल,
0: हमारा पिन कोड नंबर

0: समाचार। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। नमस्कार।

0: मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है।
1: प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वास्थ्य के खतरे को कम करें। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे।
0: जी हाँ साथियों, हरी भरी प्रकृति का है यह पैगाम, स्वस्थ सुखी हो हर इंसान।
1: वागड़ रेडियो 90.8 FM द्वारा जनहित में प्रसारित। अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
0: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित। मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है।
1: प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वास्थ्य के खतरे को कम करें। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे।
0: जी हाँ साथियों, हरी भरी प्रकृति का है यह पैगाम, स्वस्थ सुखी हो हर इंसान।
1: वागड़ रेडियो 90.8 FM द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आपकी आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: बिल्कुल साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जो हर इंसान की जिंदगी में आता है।
0: बिल्कुल,
1: वो है किशोरावस्था। यही वो उम्र है कशिश और मनीष, जब सपने साकार होते हैं, सोच बनती है और भविष्य की दिशा तय होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए श्रोता साथियों, आज हम बात करते हैं किशोर उम्र होती है खुद को संवारने की।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस विषय को लेकर हमारी दोस्तों से ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले हम गीत सुनवाएं।
3: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे नए विषय को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं कि किशोर उम्र होती है खुद को संवारने के लिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि जिंदगी का हर पड़ाव खास होता है, लेकिन एक उम्र ऐसी होती है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। जागृति जी,
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: और वो है किशोरावस्था।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, यह वो समय है जब हम खुद को पहचानते हैं, अपने सपनों को आकार देते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किशोर अवस्था आखिर होती क्या है।
2: जी बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि किशोर अवस्था जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण है जहाँ बच्चे धीरे धीरे वयस्कता की ओर बढ़ता है।
1: जी हाँ,
2: यह उम्र लगभग 12 से 19 वर्ष तक मानी जाती है।
0: जी,
2: इस समय व्यक्ति के भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर अनेक परिवर्तन होते हैं। यह वह दौर है श्रोता साथियों, जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को आकार देता है,
0: बिल्कुल
2: अपने सपनों को पहचानता है और अपने जीवन के रास्तों को तय करता है।
0: जी हाँ,
2: इसीलिए श्रोता साथियों, कहा जाता है कि किशोर अवस्था खुद को संवारने के लिए होती है।
0: बिल्कुल,
2: साथ ही हम देखते हैं कि किशोर अवस्था को जीवन की नींव रखने वाला समय कहा जाता है। जिस तरह किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है साथियों, उसी तरह व्यक्ति का भविष्य भी उसी उम्र में किए गए प्रयासों पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
2: इस समय में व्यक्ति नई चीजों को सीखने के लिए अधिक उत्सुक और ऊर्जावान होता है। जागृति जी, यही ऊर्जा यदि सही दिशा में लगाई जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। अगर बात करें कि किशोर अवस्था को इतना खास क्यों बताया जाता है, तो दोस्तों ये उम्र इसलिए भी खास है क्योंकि यही वो समय है जब आदतें बनती है।
2: जी हाँ,
0: यही समय है जब सोच विकसित होती है और यही उम्र है जब लक्ष्य तय होते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि यही उम्र है जब चरित्र का निर्माण होता है और अगर इस उम्र को सही दिशा मिल जाए तो जीवन सफल बन सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि मानव जीवन कई चरणों में बना होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। इनमें से किशोरावस्था वो पुल है जो बचपन की सरलता और युवावस्था की जिम्मेदारियों के बीच जुड़ा होता है। यही वो समय है श्रोताओं, जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की नींव मजबूत करता है, अपने सपनों को पहचानता है और जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए कहा जाता है कि किशोर उम्र खुद को संवारने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: किशोर अवस्था हम कह सकते हैं कि लगभग 12 से 19 वर्ष की आयु के बीच का समय माना जाता है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तेजी से परिवर्तन होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मन में नए विचार जन्म लेते हैं। कशिश और मनीषा, भावनाएं अधिक संवेदनशील हो जाती है और ये बदलाव कभी कभी उपभ्रम और असमंजस में भी पैदा करते हैं।
0: जी
1: लेकिन
0: हाँ,
1: यही बदलाव व्यक्ति को परिपक्वता की ओर भी ले जाते हैं।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में सबसे बड़ा काम होता है खुद को समझना।
1: बिल्कुल,
2: इस उम्र में बच्चे यह जानने लगते हैं कि उसकी रुचियां क्या हैं,
0: बिल्कुल
2: उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरियां क्या हैं। यह आत्मज्ञान श्रोता साथियों व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
2: उदाहरण के लिए जागृति जी और कशिश, अगर हम जाने कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई खेल में या कला में, इस उम्र में अपने हुनर को पहचान कर उसे निखारना बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
2: अगर इस समय व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर ले साथियों, तो आगे का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल,
2: साथ ही हम देखते हैं कि किशोर अवस्था शिक्षा प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय श्रोता साथियों दिमाग तेजी से सीखता है और नई जानकारी को जल्दी ग्रहण करता है।
1: जी हाँ,
2: अच्छी शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती साथियों, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता भी हमारी विकसित करती है।
1: जी हाँ
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से बातचीत कर ही रहे हैं कि किशोर उम्र होती है खुद को संवारने के लिए, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे। आगे भी हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी कि किस प्रकार से किशोर अवस्था में ही अगर लक्ष्य तय कर लिए जाए तो इसके ढेर सारे फायदे होंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें और भी करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
2: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की।

0: के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि किशोर उम्र होती है खुद को संवारने की,
1: बिल्कुल,
0: तो यही बात करते हैं कि किशोरावस्था वो समय है मनीषा और कशिश जब व्यक्ति खुद से प्रश्न पूछता है,
1: बिल्कुल,
0: मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, मेरी रुचियाँ क्या है।
1: जी,
0: ये आत्मखोज की प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने में मदद करती है। जो किशोर इस समय अपने भीतर झांकते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं, वे आगे चलकर अधिक सफल और संतुलित जीवन जीते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: श्रोता, इस उम्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व तेजी से विकसित होता है, आदतें, व्यवहार, सोचने का तरीका सब कुछ इसी समय आकार लेता है। यदि किशोर सकारात्मक सोच अपनाएगा कशिश और मनीषा, तो अच्छे संस्कार वो ग्रहण करेगा और अनुशासन का पालन भी करेगा।
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: इससे उनका व्यक्तित्व और मजबूत बनता है। वहीं यदि वे गलत संगति या नकारात्मक आदतों में पड़ जाए तो इसका प्रभाव जीवन भर पड़ सकता है।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों और संस्कारों का भी विकास होता है। यह वह समय होता है साथियों, जब सही और गलत की पहचान मजबूत होती है। माता पिता, शिक्षक और समाज इस उम्र में महत्वपूर्ण हमारे जीवन में भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान, सहानुभूति जैसे गुण इसी उम्र में विकसित होते हैं जागृति जी।
1: बिल्कुल।
2: अगर किशोर सही संगति में रहते हैं और अच्छे आदर्शों को अपनाते हैं तो उनका व्यक्तित्व और भी मजबूत और आकर्षण बनता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें लक्ष्य तय करने की कला की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव। दोस्तों, किशोर उम्र में ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए।
2: जी,
1: जैसे कि पढ़ाई में मुझे क्या करना है, कौन सा करियर चुनना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पर उन्हें पूरा करने की आदत भी हमारे अंदर इसी उम्र में आ जाती है।
2: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि किशोर उम्र आदतों की नींव रखने का सही समय है। अच्छी आदतें जैसे कि समय पर उठना, नियमित रूप से पढ़ाई करना, मोबाइल का सीमित उपयोग करना, किताबें पढ़ना और बड़ों का सम्मान करना। दोस्तों, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आगे चलकर हमारी पहचान बनती है। साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, तो इस उम्र में शरीर तेजी से विकसित होता है जागृति जी।
2: बिल्कुल।
1: इसलिए संतुलित आहार हमारे युवा साथियों को लेना चाहिए। रोज व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि किशोर उम्र जो होती है वो विकास की उम्र मानी जाती है।
2: जी हाँ।
1: ऐसे में अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि किशोरावस्था में भावनाएं बहुत तीव्र होती है। कभी खुशी होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी निराशा हाथ में लगती है। ये सारी भावनाएं जल्दी जल्दी बदलती है। ऐसे में जरूरी है श्रोताओं कि किशोर अपनी भावनाओं को समझे और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखे। योग, ध्यान, खेल कूद और रचनात्मक गतिविधियां भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में ये सब चीजें मदद करती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही किशोर के विकास में परिवार की भूमिका बहुत जरूरी होती है मनीषा। माता पिता और बड़ों का मार्गदर्शन, समर्थन और समझदारी किशोरों को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: यदि परिवार का वातावरण सकारात्मक है, सहयोगपूर्ण है श्रोताओं, तो किशोर आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं।
2: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में कई तरह की चुनौतियाँ भी आती हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी दोस्तों का प्रभाव, कभी सोशल मीडिया का आकर्षण। श्रोता साथियों, ये सभी चीजें किशोरों को भटका सकती हैं। कई बार जागृति जी हम देखते हैं कि किशोर गलत संगति में पड़ जाते हैं या गलत आदतों को अपना लेते हैं, जैसे कि नशा करना, समय बर्बाद करना। श्रोता साथियों, ये सब उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, ये जरूरी है कि किशोर इन चुनौतियों को समझदारी से संभाले और सही निर्णय ले।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अब बात आती है संवाद कौशल की।
2: जी
1: दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बात करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में अपनी बात स्पष्ट रखना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और सम्मान के साथ बोलना जागृति जी अच्छे संवाद को बढ़ावा दे सकता है।
2: जी हाँ।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छे संवाद से रिश्ते मजबूत बनते हैं।
2: बिल्कुल।
1: दोस्तों, जब कोई हमारी गलती बताता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन आपको बताएं तो सही आलोचना हमें बेहतर भी बनाती है।
2: बिल्कुल।
1: उसे आप सीख के रूप में ले, खुद को सुधारने का मौका समझे श्रोता साथियों।
2: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि किशोर उम्र में असफलता मिलना आम बात है जागृति जी, जैसे कि परीक्षा में कम नंबर आना या फिर किसी प्रतियोगिता में हार जाना। लेकिन ऐसे में हमारे किशोरों को ये ध्यान रखना है कि असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है कुछ नया सीखने की।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो व्यक्ति को हर कठिनाई से पार करने में मदद करती है, इसी तरह किशोरों को अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और हमेशा सकारात्मक सोच को अपनानी होगी। कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, यही सोच उन्हें हर लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करती है। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि किशोरावस्था जीवन का वो अनमोल समय है जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। ये उम्र खुद को पहचानने, अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने सपनों को साकार करने का होता है, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बार बार बता रहे हैं। यदि इस समय का सही उपयोग किया जाए मनीषा, तो जीवन सफलता, संतुलन और खुशियों से भर जाता है। इसीलिए हमारे श्रोता साथियों को कशिश हम यही कहना चाहेंगे कि किशोर उम्र केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि जीवन को संवारने का सुनहरा अवसर है। जो किशोर इस अवसर को पहचानते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं, वही आगे चलकर समाज और देश के उज्जवल भविष्य

0: अपने भविष्य की नींव रखता है, जैसा कि जागृति जी आपने बताया था। सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच, मेहनत और अनुशासन के साथ इस उम्र का सही उपयोग किया जाए तो श्रोता साथियों, व्यक्ति अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए हर किशोर

0: बनता है।
1: बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो श्रोता साथियों, ऐसे में याद रखिए कि आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसके लेखक आप खुद हैं। तो आज से उठिए, आगे बढ़िए और इस खूबसूरत उम्र को यूं ही मत जाने दीजिए।
0: जी हाँ,
1: इसे अपने सपनों की उड़ान बना दीजिए श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब आप खुद को संवारेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिए कि आपका आज का प्रयास ही कल की आपकी सफलता बनेगा।
0: जी हाँ, इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को सुनवा देते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से आपको जो बातें बताई वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी आशा के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज़, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस,

0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति कार्यक्रम युवाओं की।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चों के अधिकार।
0: घर परिवार में दुलार

0: माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार बच्चों का है अधिकार।
1: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
2: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
1: वाग्धारा संस्था और वाग रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए स्वरोजगार का महत्व और अवसर को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम बात करें स्वरोजगार को लेकर,

0: तो जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी दोस्त जागृति
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि किससे पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए स्वरोजगार के महत्व और अवसर को लेकर। जैसा कि कुछ बातें अंजलि हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों के साथ करी थी कि महिलाओं का समाज में स्थान और भूमिका सदियों से बदलाव के दौर से गुजर रही है। हालांकि कई चुनौतियां सामने आई हैं, फिर भी महिलाओं ने अपनी मेहनत और संघर्ष से ये साबित कर दिया है कि वे किसी भी कार्य में पीछे नहीं है।
1: बिल्कुल जागृति जी, विशेषकर स्वरोजगार और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। समाज में पुरुषों के समान महिलाओं के पास भी रोजगार के अवसर होने चाहिए ताकि वे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सके।
0: जी हाँ,
1: स्वरोजगार से महिलाएं न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं श्रोता साथियों, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य भी करती हैं। तो जानते हैं जागृति जी कि स्वरोजगार महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल अंजलि, आज भी महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता और समान अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दबावों का सामना करती है। शिक्षा की कमी, पारिवारिक दायित्व और समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। हालांकि हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में स्थिति बेहतर हुई है, फिर भी रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बहुत कम है। आज भी अधिकांश महिलाएं घर के कामकाज और परिवार की देखभाल में व्यस्त रहती है, जिससे उन्हें अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास का अवसर नहीं मिलता है। ऐसे में

0: जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, सेवाएं हो गई, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, फैशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में वे कार्य कर सकती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, महिलाओं के लिए स्वरोजगार का महत्व है आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और समाज में योगदान। आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर हम बात करें तो स्वरोजगार महिलाओं को अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल,
1: यह उन्हें

0: है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ समय का लचीलापन भी बना रहता है, यानी कि स्वरोजगार से महिलाएं अपने कार्य कौशल में लचीलापन बना सकती हैं। वे अपने व्यवसाय को अपने समय के अनुसार चला सकती हैं, जो उन्हें पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल अंजलि, उद्यमिता के अवसर को लेकर हम बात करें तो स्वरोजगार महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में काम करने का मौका देता है। ये उन्हें नए विचारों को साकार करने और व्यावसायिक रूप से सफल होने का मौका देता है।
1: बिल्कुल,
0: समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। जब महिलाएं स्वरोजगार में सफलता प्राप्त करती है तो ये समाज में एक सकारात्मक संदेश भेजता है, ये दूसरों को भी प्रेरित करता है और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है।
1: बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी रोजगार के अवसर और चुनौतियों की, तो हम देखते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में महिलाएं आज भी कई चुनौतियों का सामना करती है। पारिवारिक जिम्मेदारी, शिक्षा की कमी, सामाजिक रूढ़िवादिता और सुरक्षा की समस्या मुख्य कारण हो सकती है, जिसकी वजह से महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र पर लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न भी एक बड़ी चुनौती है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वरोजगार के क्षेत्र में भी महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी बार पूंजी की कमी, व्यवसाय के बारे में जानकारी की कमी, समाज द्वारा व्यवसायिक महिलाओं को लेकर एक नकारात्मक दृष्टिकोण कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो महिलाओं को स्वरोजगार में रुकावट डालती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अंजलि ग्रामीण और शहरी महिलाओं में अंतर को लेकर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पास स्वरोजगार के कम अवसर होते हैं। वहाँ की महिलाएं मुख्य रूप से कृषि कार्यों में संलग्न होती है और उनके पास स्वरोजगार के लिए संसाधनों की कमी होती है।
1: बिल्कुल,
0: वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अधिक अवसर होते हैं, जैसे कि खुद का व्यापार हो गया, सेवाएं हो गई, तकनीकी क्षेत्र हो गए। शहरी महिलाएं अधिक शिक्षा प्राप्त करती है और उनके पास व्यावसायिक कौशल और संसाधनों की भी अधिक उपलब्धता होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अभी हमने कहा कि शहरी महिलाएं अधिक शिक्षा प्राप्त करती हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि गांव की महिलाओं ने भी शिक्षा प्राप्त की है। आज हम देखते हैं कि गांव की महिलाएं भी अधिक पढ़ी लिखी है, वो घर से बाहर निकलना जानती है, वो घर से बाहर जॉब करना जानती है, उन्हें भी इन सब चीजों के बारे में पता है कि किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना है। तो आज हम कह सकते हैं कि शहरी और गांव की महिलाओं में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं रहा है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी कई सारी योजनाएं चलाई हैं। भारत सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया कराना है। इसी के साथ मुद्रा योजना चली हुई है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों, विशेषकर महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने रोजगार को बढ़ा सके।
0: जी हाँ।
1: नारी शक्ति योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं के लिए अलग अलग कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ महिला सशक्तिकरण योजना बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल अंजलि, शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण की भूमिका को लेकर हम बात करें तो स्वरोजगार के लिए शिक्षा और कौशल का होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: एक महिला को यदि स्वरोजगार में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल हासिल करना होगा। कई सरकारी और निजी संस्थाएं महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है ताकि वे स्वरोजगार के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा महिलाओं को तकनीकी शिक्षा और डिजिटल प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है ताकि वे ऑनलाइन व्यापार में भी हिस्सा ले सके।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि कई जगह ऐसी हैं जहां महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए कई सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि इसी वजह से बहुत सी महिलाएं अपने व्यवसायों को पीछे छोड़ देती हैं। इन बाधाओं को पार करके महिलाओं को शिक्षा और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, तभी महिलाएं अपना खुद का रोजगार कर सकती हैं।
0: बिल्कुल, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को लेकर अंजलि हम बात करें तो महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना और आत्मनिर्भर बनना समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। जब महिलाएं स्वयं के व्यवसाय में सफलता प्राप्त करती है श्रोताओं, तो इससे न केवल उनके परिवार की स्थिति में सुधार होता है बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल,
0: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से समाज में समानता की भावना उत्पन्न होती है और पारंपरिक लिंग भेदभाव को खत्म करने में मदद मिलती है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में तकनीकी संसाधनों का उपयोग स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑनलाइन

0: बिल्कुल, इसी के साथ स्वरोजगार में महिलाओं की उद्यमिता को लेकर अंजलि हम बात करें तो महिला उद्यमिता स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बनाती है। महिलाएं उद्यमी न केवल अपने व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाती है बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती है।
1: बिल्कुल,
0: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेटवर्किंग अवसर और सरकार की योजनाएं उपलब्ध हैं जो महिलाओं को कारोबार की दुनिया में आत्मविश्वास और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।
1: बिल्कुल, तो यही हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार का महत्व अपार है। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। स्वरोजगार से महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव

0: शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसरों की समानता से ही हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बात की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के महत्व को लेकर, उम्मीद करते हैं कि ये बातें हमारे श्रोता साथी जरूर समझ गए होंगे कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार का कितना महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस

0: अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@wangdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने दोस्त जागृति को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, तुम अपने खान पान का रखो अच्छे से ध्यान।
1: जी हाँ, वरना बाद में पछताओगे। यह बात आज ही तुम जान लो।
2: दूध दही है बहुत जरूरी, फल तरकारी बड़ी है न्यारी।
0: यह सब पोषण की है खान, जो तुम इनसे दूर रहोगे होगा सेहत का नुकसान।
2: वाग्धारा संस्थान और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार बच्चों का है अधिकार।
0: जी हाँ, पर्यावरण सुधार

0: बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार। वाग्धारा संस्था और वाग रेडियो द्वारा जनहित में जारी। ताजी खबर, ताजी खबर। कमला ने घोर में चार बई दिए, साने साने भराई गई। कौन हती कमला आ बई दिए?
1: अरे आ सब तो मारी दोस्तनी हती। आ सब खबर लेवा आवी हती कि मारी मुन्नी नो तंदुरुस्ती नो रास हूँ है।
0: हूँ है रास? अमनी भी बताड़ो।
1: 100 महीना था तमेस पेट पूजा। रसोड़ा में जी भी हो चिमकी दार चावल ले लो, शाक भाजी मलावी ने बनावो, आने पीसी ने गाड़ो बनावो, ने अगर आपड़े घोर में घी हो तो ऊपर थकी घी मलावो, ने सोरा ने खवड़ावो, दाड़ा में तर्ण वकर हो ग्रामनी कटोरी में।
0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। वाग रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल,
1: जैसा कि साथियों हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करते हैं तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय हमारे बीच जुड़ता है।
0: जी हाँ,
1: आज भी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीना सबको पसंद होता है मनीषा।
0: जी हाँ कोशिश,
1: लेकिन हम देखते हैं कि बार बार ठंडा पानी पीना हमारी सेहत के लिए गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीना राहत तो देता है, लेकिन जब यह आदत लंबे समय तक चलती रहती है तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों से करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना साथियों को पहले मनोरंजन इस गीत के साथ करवाएं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: बिल्कुल

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, बार बार ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही है या गलत।
1: जी हाँ
0: कशिश, हम देखते हैं कि पानी मानव जीवन का आधार है। बिना भोजन के व्यक्ति कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन श्रोता साथियों, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। शरीर के संतुलन, तापमान नियंत्रण, पाचन प्रक्रिया और विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने का चलन बढ़ जाता है।
1: जी जी,
0: खासकर हम देखते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी या बर्फ वाला पानी पीना लोगों को तुरंत राहत देता है। लेकिन श्रोता साथियों, सवाल यह है कि क्या बार बार ठंडा पानी पीना वास्तव में सेहत के लिए सही है या इससे शरीर को नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि मानव शरीर लगभग 60-70% शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के, श्रोता साथियों, कई कार्य होते हैं, जैसे कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, पाचन में सहायता करना, पोषक तत्वों और कोशिकाओं तक पानी पहुंचाना, विषैले पदार्थों को बाहर निकालना और साथ ही श्रोता साथियों त्वचा को भी यह स्वस्थ बनाए रखता है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि पानी किस तापमान का हो।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ठंडा पानी उसे राहत दे सकता है।
0: जी,
1: लेकिन श्रोता साथियों, बार बार ज्यादा ठंडा पानी पीना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: अगर बात करें कि बार बार ठंडा पानी पीने के क्या नुकसान है, तो इसका सबसे पहले प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है मनीषा।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि ठंडा पानी पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, जैसे कि भोजन के बाद ठंडा पानी पीने से भोजन सही तरीके से नहीं पच पाता, जिससे हमें गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही इसका असर रक्त संचार पर भी पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि दोस्तों ज्यादा ठंडा पानी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है।
0: जी बिल्कुल,
1: इससे ब्लड फ्लो जो है वो धीमा हो जाता है और दिल पर भी ज्यादा दबाव पड़ सकता है। साथ ही अगर बात करें गले और श्वसन की, तो बार बार ठंडा पानी पीने से गला खराब हो सकता है साथियों आपका, और सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पसीना भी अधिक निकलता है। ऐसे में श्रोता साथियों, ठंडा पानी पीने से तुरंत हमें राहत मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा ठंडा पानी हमें ताजगी देता है, थकान कम करता है, मुंह और गले को भी ठंडक देता है, मानसिक रूप से सुकून देता है साथियों। इसी वजह से लोग बार बार ठंडा पानी पीने लगते हैं। अगर हम सीमित मात्रा में ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार फायदेमंद है, तो श्रोता साथियों, इससे शरीर को तुरंत ठंडक मिलती है। गर्म मौसम में ठंडा पानी शरीर के तापमान को कम करता है और तुरंत राहत देता है। साथ ही श्रोता साथियों, ठंडा पानी पीने से शरीर में ताजगी आती है और व्यक्ति अधिक सक्रिय महसूस करता है।
1: जी हाँ
0: मनीषा, जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर का तापमान कशिश बढ़ जाता है, ऐसे में ठंडा पानी शरीर को जल्दी ठंडा करता है। ठंडा पानी पीने से पानी की मात्रा जल्दी पूरी होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, ठंडे पानी का सीमित मात्रा में उपयोग किया

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों बातचीत कर रहे हैं कि ठंडा पानी पीना हमारी सेहत के लिए सही है या गलत को लेकर
1: जी,
0: और गीत से पहले जैसा कि हम जान पाए थे कि ठंडे पानी का अगर हम सेवन करते हैं तो इसके कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन वहीं अगर सीमित मात्रा में ठंडे पानी का सेवन किया जाए तो ये फायदेमंद भी हो सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: और गीत से पहले जैसा कि हमने बताया था कि पानी पीने के कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको सामान्य या फिर हल्का ठंडा पानी ही पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही बहुत ज्यादा बर्फ वाला पानी आप न ले दोस्तों, इससे नुकसान हो सकता है शरीर को।
1: जी हाँ।
0: भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी न पिए, सुबह खाली पेट सामान्य पानी पिए साथियों, और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें, क्योंकि मनीषा हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में दोस्तों पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम ठंडे पानी बहुत ज्यादा ठंडे पानी की जगह पर सामान्य तापमान वाला पानी पियेंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा।
1: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि आयुर्वेद में ठंडा पानी पीने को सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी गई है। भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना है श्रोता साथियों। गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी अधिक लाभकारी माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ठंडा पानी अग्नि शक्ति को कमजोर कर देता है साथियों।
0: साथ
1: ही कशिश हम देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में ठंडा पानी पीना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि तेज गर्मी में, भारी शारीरिक श्रम के बाद में, शरीर का तापमान अधिक होने पर,

0: या बर्फ वाला पानी नहीं पीना चाहिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बताएं श्रोता साथियों, तो हमारे बुजुर्ग हमेशा हमें ये कहते थे कि मिट्टी के घड़े का पानी सबसे अच्छा होता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि मनीषा घड़े का पानी जो है वो प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है,
0: बिल्कुल
1: शरीर के अनुकूल होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम घड़े का ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं कि आजकल की जीवन शैली में फ्रिज का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
0: जी हाँ,
1: और ठंडा पानी एक आदत बन चुका है। लेकिन दोस्तों ये आदत धीरे धीरे स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम जागरूक बने और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए नुकसानदायक होती है। यही बात ठंडे पानी पर भी लागू होती है श्रोता साथियों। अगर आप कभी कभी ठंडा पानी पीते हैं तो यह हानिकारक नहीं है
1: जी।
0: लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो बार बार बहुत ठंडा पानी पिया जाए तो हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि बार बार ठंडा पानी पीना पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह पाचन तंत्र, गले, दांत और शरीर के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, जरूरी है कि हम संतुलन बनाए रखें और जरूरत के अनुसार ठंडा पानी पिएं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि स्वस्थ जीवन के लिए केवल यह मायने नहीं रखता कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे खा रहे हैं और कैसे पी रहे हैं। ठंडा पानी हमें कुछ समय के लिए राहत तो दे सकता है साथियों, लेकिन दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए संतुलन और समझदारी भरा व्यवहार ही जरूरी है। इसीलिए अगली बार जब आप बहुत ठंडा पानी पीने का मन करें तो एक पल रुककर सोचें, क्या यह आपके शरीर के लिए सही है। संतुलन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है श्रोता साथियों। अपने पानी पीने के तरीकों पर ध्यान दें और सही पानी का सेवन करें।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है
0: जी,
1: और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में, आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अभी ही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
5: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
0: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
5: वागधारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
6: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना ये। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
6: सुषमा हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
5: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार, जो पाता है जीवन में शिक्षा उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार, बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
0: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
6: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण, शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे एक नया विषय रहता है बातचीत का, क्योंकि हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान में बात ही करते हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाए। साथियों, तो आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हर विद्यार्थी, हर युवा और हर परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ। बात कर रहे हैं पढ़ाई और जीवन में संतुलन को लेकर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और हर किसी के सपने भी बड़े हैं साथियों। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्या हम अपने स्वास्थ्य, रिश्तों को, मानसिक शांति को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो आइए साथियों पहले सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और वागड़ रेडियो 90.8 FM की ओर। साथियों, जैसा कि आज हम कार्यक्रम को एक नए विषय के साथ लेकर हाजिर हैं और गीत से पहले मैंने विषय के बारे में आपको बता ही दिया था और छोटी मोटी बातें भी हमारी हुई थी कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो हर विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हुआ है, हर युवा के लिए जरूरी है और साथ ही हर परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। बातचीत कर रहे हैं पढ़ाई और जीवन में संतुलन को लेकर। साथियों, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है और सबके सपने वर्तमान में बड़े बड़े हैं। हर कोई कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है साथियों, लेकिन हमारे सामने सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या हम सिर्फ पढ़ाई ही करते जा रहे हैं या फिर जीवन को भी जी रहे हैं। तो बात करते हैं श्रोता साथियों सबसे पहले पढ़ाई को लेकर। दोस्तों, जैसा कि पढ़ाई हमारे जीवन का आधार होती है, ये हमें ज्ञान देती है, सोचने की क्षमता देती है और हमें आत्मनिर्भर भी बनाती है। साथ ही हम देखते हैं दोस्तों कि एक अच्छा करियर, सम्मानजनक जीवन और समाज में पहचान, ये सब जो चीजें हैं वो भी पढ़ाई से ही संभव हो पाती है। लेकिन जब दोस्तों पढ़ाई ही जीवन बन जाए और जीवन के बाकी पहलू पीछे छूट जाए, तब समस्या और भी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कब वे तनाव, थकान और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए श्रोता साथियों, पढ़ाई के साथ साथ जीवन का संतुलन भी जरूरी माना जाता है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि पढ़ाई जीवन का हिस्सा है, जरूरी है दोस्तों, लेकिन वो जीवन नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई में भी संतुलन होता है। जैसे कि दोस्तों, संतुलन का मतलब होता है हर चीज को उसके उचित स्थान और समय के रूप में देखना। जैसे कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, मानसिक शांति, अपने शौकों और रुचियों पर कार्य करना। दोस्तों, जब ये सभी चीजें एक साथ चलती है तभी जीवन पूर्ण बनता है। हम कह सकते हैं कि अगर इसके विपरीत हमारी पढ़ाई में और जीवन में असंतुलन हो जाए तो उसके ढेर सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे, तो देखते हैं कि जब पढ़ाई और जीवन के बीच संतुलन नहीं होता दोस्तों, तो इसके ढेर सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो उन नकारात्मक प्रभावों को लेकर हम कार्यक्रम में आगे बातचीत करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि संतुलन क्यों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता का आधार माना जाता है। हम देखते हैं कि ये हमें स्वस्थ और खुश तो रखता ही है, साथ ही इससे हमारी एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। हमें जीवन का आनंद लेना ये सिखाता है, क्योंकि अगर जीवन में संतुलन होगा तो हम एक छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये हमें दीर्घकालिक सफलता भी दिलाता है। हम कह सकते हैं कि एक थका हुआ दिमाग ज्यादा देर तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वही एक आत्मनिर्भर दिमाग, एक सोचने वाला दिमाग दोस्तों, कितनी समस्याएं क्यों ना आ जाए, अगर उसके जीवन में संतुलन है तो वो कई समस्याओं का सामना हंस हंस कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन में संतुलन होना क्यों जरूरी है। तो आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी होंगी। आगे दोस्तों, समय प्रबंधन को लेकर भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले हम संतुलन क्या होता है और संतुलन क्यों जरूरी है इसको लेकर बातचीत कर पाए थे। यही अगर बात करूं श्रोता साथियों कि अगर जीवन में असंतुलन हो जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। साथियों, जब पढ़ाई और जीवन के बीच संतुलन नहीं होता है तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव और चिंता बढ़ जाती है। दोस्तों, लगातार पढ़ाई और परिणामों का दबाव हमारे मन को थका देता है और ये बात सच भी है। जैसे कि जो विद्यार्थी होते हैं वो चिंता और अवसाद का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनमें नींद की कमी देखी जाती है और जब नींद पूरी नहीं होगी तो आंखों में दर्द रहता है, सिर दर्द और थकान की समस्या भी हो जाती है। और ये सब श्रोता साथियों जो संकेत है, जो शारीरिक समस्याएं हैं, वो जीवन में असंतुलन के कारण ही होती है। हम कह सकते हैं कि साथ ही रिश्तों में दूरी भी देखी जाती है, क्योंकि जब हम केवल पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं तो परिवार और दोस्तों से हमारी दूरी बन जाती है, जिससे हम उन्हें समय नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारे रिश्तों में भी दूरी आ जाती है। और लगातार पढ़ाई करने से श्रोता साथियों दिमाग थक जाता है और नई सोच विकसित नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि अगर संतुलन बनाना है तो पढ़ाई और जीवन दोनों में हमें संतुलन बनाना होगा। हम पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करें और बाकी के काम जीवन के समय पर करें। श्रोता साथियों, एक बात आपको यहाँ पर और भी ये ध्यान रखनी है कि आपको समय प्रबंधन को भी अपनाना है। जैसे कि दोस्तों, अगर संतुलन बनाना ही है तो समय का सही उपयोग करना भी जरूरी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पढ़ाई का एक निश्चित समय हम तय करें, बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें, दिन का एक हिस्सा मनोरंजन और आराम के लिए रखें। श्रोता साथियों, साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया का भी हम सीमित मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि जब समय व्यवस्थित होता है दोस्तों तो जीवन अपने आप ही संतुलित होने लगता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन और पढ़ाई दोनों में अगर संतुलन बनाना है तो हमें सबसे पहले समय की कद्र करना सीखना होगा, क्योंकि श्रोता साथियों समय जो है वो एक दिशीय होता है, यानी कि वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ना ही वो किसी का सगा होता है और ना ही किसी का दोस्त होता है, वो श्रोता साथियों अपनी गति में चलता रहता है। बस बदलाव हमें करने की जरूरत पड़ती है, हमें समय का सदुपयोग करना है। अगर हम सोच रहे हैं श्रोता साथियों कि ये काम मैं कल कर लूंगा और क्या पता उस काम को करने का सही समय आज ही हो श्रोता साथियों, तो उसकी वजह से हम कई चीजों को यूं ही छोड़ देते हैं, यूं ही गंवा देते हैं। और बाद में जब हमें पता चलता है कि ये चीज तो उस समय करनी थी या उस समय पर करनी थी, तो हमारे पास बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता श्रोता साथियों। इसलिए जीवन में हर चीज का संतुलन होना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, तो दोस्तों अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में संतुलन भी बना पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अक्सर श्रोता साथियों विद्यार्थियों को ये हमने सोचते हुए देखा है कि अभी पढ़ाई जरूरी है, स्वास्थ्य को बाद में देखेंगे, जिसके कारण वो पढ़ाई ही करते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सोच गलत है। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ आराम भी जरूरी है। जैसे कि आप रोज थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, पर्याप्त नींद आपको लेनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं श्रोता साथियों, तो इससे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को तो नींद पूरी तरीके से लेनी चाहिए, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से फोकस कर सके। साथ ही श्रोता साथियों, हमें खूब पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम पानी ठीक तरीके से नहीं पीते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण भी दोस्तों कई बार हमारी कई चीजों में मन नहीं लगता है। इसलिए हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खूब पानी भी पीना चाहिए और संतुलित रूप से आहार भी लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमें पढ़ाई में और जीवन में संतुलन बनाना है तो हमें इन ढेर सारी बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि श्रोता साथियों, आपने कई बार सफल लोगों के बारे में तो सुना ही होगा जिन्होंने अपने जीवन में संतुलन बना के रखा। दोस्तों, वे न केवल अपने काम में सफल रहे बल्कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य, परिवार और समाज को भी महत्व दिया है, और यही संतुलन उन्हें असाधारण बनाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जीवन में संतुलन बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने जैसा नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है और जीना है। अगर हम केवल पढ़ाई करते रहेंगे दोस्तों और जीवन को जीना भूल जाएंगे, तो ये सफलता हमारे लिए अधूरी रह जाएगी।
इसलिए श्रोता साथियों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन ही वह धुरी है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। श्रोता साथियों, पढ़ाई जरूरी है लेकिन जीवन उससे भी बड़ा है। सफलता जरूरी है लेकिन खुश रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है साथियों। इसलिए याद रखिए, किताबों से ज्ञान लीजिए, जीवन से अनुभव लीजिए और दोनों को मिलाकर अपना भविष्य बनाइए साथियों, क्योंकि संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता का रास्ता होता है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी ढेर सारी हो चुकी है। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: ताजी खबर, ताजी खबर। कमला ने घोर में चार बई दिए, साने साने भराई गई। कौन हती कमला आ बई दिए?
1: अरे आ सब तो मारी दोस्तनी हती। आ सब खबर लेवा आवी हती कि मारी मुन्नी नो तंदुरुस्ती नो राज हूँ है।
0: हूँ है राज? अमनी भी बताड़ो।
1: 100 महीना था तमेस पेट पूजा, रसोड़ा में जी भी हो जिम की दाल चावल ले लो, शाक भाजी मलावी ने बनावो, आने पीसी ने गाड़ो बनावो, ने अगर आपड़े घोर में घी हो तो ऊपर थकी घी मलावो, ने सोरा ने खवड़ावो, दाड़ा में तर्ण वकर हो ग्रामनी कटोरी में।
0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। वाग रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में जारी। सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
2: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
3: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
4: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
2: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
3: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
4: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
2: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ताजी खबर, ताजी खबर। कमला ने घोर में चार बई दिए, साने साने भराई गई। कौन हती कमला आ बई दिए?
1: अरे आ सब तो मारी दोस्तनी हती। आ सब खबर लेवा आवी हती कि मारी मुन्नी नो तंदुरुस्ती नो राज हूँ है।
0: हूँ है राज? अमनी भी बताड़ो।
1: 100 महीना था तमेस पेट पूजा, रसोड़ा में जी भी हो जिम की दाल चावल ले लो, शाक भाजी मलावी ने बनावो, आने पीसी ने गाड़ो बनावो, ने अगर आपड़े घोर में घी हो तो ऊपर थकी घी मलावो, ने सोरा ने खवड़ावो, दाड़ा में तर्ण वकर हो ग्रामनी कटोरी में।
0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। वाग रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो

0: वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसने समय समय पर अपनी जो चीजें हैं, प्रतिभा, ज्ञान और वैज्ञानिक क्षमता है, उसे दुनिया को प्रभावित किया है।
0: जी जी।
1: आज विज्ञान और तकनीक केवल मशीनों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल फोन से लेकर खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, संचार, परिवहन और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी महत्व को समझने और देश के वैज्ञानिक को तक उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 11 मई यानी आज के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, यह दिन केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि भारत की वैज्ञानिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और नवाचार की पहचान है। यह दिन हमें याद दिलाता है कशिश कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के सही उपयोग से होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना दस्तूर है कार्यक्रम का,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ मनोरंजन करवा दे हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि भारत आज जिस आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, उसके पीछे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है दिलीप जी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन का भी हिस्सा बन चुका है। साथियों, मोबाइल फोन, इंटरनेट, चिकित्सा उपकरण, कृषि मशीनें, साथ ही डिजिटल शिक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष अनुसंधान और ऐसी सभी जो चीजें हैं वो सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही देन है।
1: बिल्कुल,
0: इन उपलब्धियों और वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मान करने के लिए हर साल आज ही के दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी। इसका मुख्य कारण 11 मई 1898 को राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण थे।
0: बिल्कुल,
1: भारत ने इस दिन सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया था। श्रोता साथियों, इस अभियान को पोखरण द्वितीय नाम से जाना जाता है। इस परीक्षणों ने भारत को विश्व के कह सकते हैं कि शक्तिशाली देशों की श्रेणी में ला खड़ा दिया था। और यह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था कशिश, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत, आत्मविश्वास और तकनीक दक्षता का प्रमाण भी था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ताकि देश के वैज्ञानिकों और तकनीक की विशेषज्ञों को सम्मान मिल सके। श्रोता साथियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य यह है कि ये वैज्ञानिकों का सम्मान करता है। देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ दिन रात मेहनत करके नई खोज करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस दिवस पर उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के युवा कशिश कल का भारत है। यह दिवस युवाओं को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि जब देश अपनी तकनीक खुद विकसित करता है तब वह दूसरे देशों पर कम निर्भर होता है, और यह दिवस आत्मनिर्भरता का भी संदेश देता है।
0: बिल्कुल,
1: समाज को यह समझना जरूरी है कशिश कि तकनीक केवल सुविधा नहीं देती बल्कि विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो इस उद्देश्य से मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें तो आज का युवा ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता बनने वाला है। साथियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का कार्य करता है, साथ ही देश के विज्ञान दिन रात मेहनत करके नई तकनीकों का विकास करते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में उनकी मेहनत से देश मजबूत बनता है अंजलि जी, और यह दिवस उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है।
1: जी हाँ,
0: अगर हम बात करें तो समाज में अंधविश्वास और गलत धारणाओं को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है, और यह दिवस दोस्तों लोगों को तर्क और विज्ञान आधारित सोच अपनाने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही तकनीक के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और संचार जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से विकास हो रहा है, इसलिए यह दिवस महत्वपूर्ण है और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। पहले जहां हम कई चीजों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहते थे, वहीं आज भारत खुद नई तकनीक विकसित कर रहा है।
0: जी हाँ,
1: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कम लागत में सफल मिशन भेजकर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने यह साबित किया कि भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। आज गांवों तक इंटरनेट और स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस ने लोगों का जीवन आसान बना दिया है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दोस्तों से बातें कर ही रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं बात करी कशिश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का क्या महत्व है। श्रोता साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके वैज्ञानिक विकास पर निर्भर करती है।
1: बिल्कुल,
0: यह दिवस भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। नई सोच और नए प्रयोग जो है वो समाज को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी हाँ।
0: यह दिवस लोगों को नए आविष्कारों के लिए प्रेरित करता है और तकनीकी विकास ने नए उद्योग स्थापित होते हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि तकनीक के माध्यम से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुविधाओं में सुधार हो रहा है। आज का समय तकनीक का समय है। बिना तकनीक के आधुनिक जीवन की कल्पना करना भी कठिन है।
1: जी बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को छोटा बना दिया है। नई तकनीकों के कारण यात्रा अधिक सुरक्षित और तेज हो गई है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ने आर्थिक लेन देन को आसान बनाया है।
1: बिल्कुल।
0: और विद्यार्थी का घर बैठे दुनिया की जानकारी प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, आज के समय में प्रौद्योगिकी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो गई है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दिवस हमें ये भी बताता है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है बल्कि निर्माता भी बन रहा है। अंतरिक्ष मिशन, डिजिटल इंडिया, रक्षा तकनीक और चिकित्सा अनुसंधान में भारत ने उल्लेखनीय प्रगतियां की हैं साथियों।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं कि रक्षा तकनीक किसी भी देश की सुरक्षा का आधार होती है, जैसे कि मिसाइल तकनीक, परमाणु शक्ति, आधुनिक हथियार। श्रोता साथियों, सभी देश को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं।
0: जी हाँ।
1: आज तकनीक जो है वो गांवों तक भी पहुंच रही है, जैसे कि किसान भी जो है वो मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी के बारे में पता कर पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग ने ग्रामीण जीवन को आसान बना दिया है अंजलि जी। साथ ही हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसलिए भी मनाना जरूरी है क्योंकि तकनीक के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ उद्योग और संचार जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से विकास हो रहा है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जहां तकनीक के कई लाभ हैं, वहीं कई नुकसान भी हैं। अत्यधिक मोबाइल उपयोग, बच्चों और युवाओं का बुरा प्रभाव, कुछ क्षेत्रों में मशीनों के बढ़ते उपयोग ने रोजगार को कम होते देखा है।
1: जी हाँ।
0: ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी जैसी समस्याएं बढ़ रही है। श्रोता साथियों, लोग तकनीक के कारण परिवार और समाज से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए तकनीक का उपयोग संतुलित और जिम्मेदारी से करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि युवा किसी भी देश की ताकत होते हैं। यदि युवा तकनीक का सही उपयोग करें तो देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। नई तकनीक सीखना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, नवाचार करना, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना, तकनीक का समाज हित में उपयोग होना, युवाओं को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों तो आपसे कहना चाहेंगे कि डिजिटल अभियान जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास हुआ है। अगर बात करें युवाओं की तो युवाओं के लिए भी ये दिवस काफी महत्वपूर्ण है अंजलि जी, क्योंकि आज का समय तकनीक का समय है। जो युवा तकनीक को समझेगा और सही उपयोग करेगा वही भविष्य में आगे बढ़ सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि युवाओं को केवल नौकरी खोजने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें नए विचार और स्टार्टअप भी विकसित करने चाहिए।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना कि किस तरीके से प्रौद्योगिकी दिवस हम मनाते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। बातें बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी निरंतर हमारे श्रोता साथियों के साथ यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी बीच आपसे कहना चाहेंगे कि अंजलि जी, तकनीक के ढेर सारे लाभ होते हैं। जैसे कि तकनीक ने जीवन को आसान और तेज बनाया है, संचार व्यवस्था तेज हुई है, शिक्षा सुलभ हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है, साथ ही व्यापार और बैंकिंग भी आसान हो चुका है। साथ ही अगर बात करें खेती में उत्पादन की, तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है श्रोता साथियों, और परिवहन व्यवस्था जो है वो भी आधुनिक बनी है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं अंजलि जी की तकनीक के आने के ढेर सारे लाभ हैं, लेकिन वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि जहां तकनीक के ढेर सारे लाभ होते हैं, वहां कुछ चुनौतियां भी हैं साथियों। जैसे कि साइबर अपराध, यानी कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी जैसी समस्याएं वर्तमान में बढ़ रही हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों में मशीनों के कारण पारंपरिक रोजगार भी कम हो रहे हैं। तकनीकी कचरा और प्रदूषण पर्यावरण के लिए चुनौती बन रहे हैं। वहीं ज्यादा स्क्रीन टाइम युवाओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल रहे हैं साथियों।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए तकनीक का संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि पहले तकनीक केवल शहरों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब गाँवों में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल,
1: किसान मोबाइल से मौसम की जानकारी लेते हैं, छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, महिलाएं डिजिटल माध्यम से छोटे व्यवसाय चला रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन मिल रही है, इससे ग्रामीण भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्रोता
1: साथियों, देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होता है जब देश तकनीक के क्षेत्र में मजबूत बनेगा। यदि हम अपनी मशीनें, सॉफ्टवेयर और तकनीक खुद बनाएंगे तो आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनेंगे। भारत में स्टार्टअप संस्कृति और डिजिटल नवाचार तेजी से बढ़ रहे हैं। युवा नई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो देश को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। श्रोता साथियों, इस दिन देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विज्ञान प्रदर्शनियां, सेमिनार, कार्यशालाएं, छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं, वैज्ञानिकों का सम्मान और नई तकनीकों का प्रदर्शन। स्कूल, कॉलेज और संस्थान विज्ञानों को हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी करते हैं। श्रोता साथियों, प्रौद्योगिकी केवल मशीन नहीं है बल्कि भविष्य की दिशा है। यदि कशिश इसका उपयोग मानवता के हित में किया जाए तो यह समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए दोस्तों जो पर्यावरण के अनुकूल हो, गरीबों के लिए उपयोगी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए और समाज को समान अवसर पैदा करे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, मेहनती वैज्ञानिकों और तकनीकी विकास का सम्मान करने का दिन है।
0: जी हाँ।
1: कह सकते हैं कशिश की यह दिवस हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग केवल सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक के साथ नैतिकता, जिम्मेदारी को भी जोड़ें। यदि विज्ञान का उपयोग सही दिशा में किया जाएगा दोस्तों, तो यह गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और कई सामाजिक समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है।
0: हाँ।
1: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें यह विश्वास दिलाता है कि भारत केवल तकनीकी का उपयोग करने वाला देश नहीं है बल्कि नई तकनीकों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आने वाले समय में भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा और पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का परिचय भी देगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार स्वदेशी तकनीक है।
1: बिल्कुल,
0: साथियों जब हम अपने मोबाइल, सॉफ्टवेयर, मशीनें या रक्षा उपकरण स्वयं बनाएंगे तब देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, इससे रोजगार बढ़ेंगे और विदेशी निर्भरता कम होगी। साथ ही स्टार्टअप संस्कृति भी तकनीकी विकास को एक नई दिशा दे रही है दोस्तों।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप देशों में शामिल हो चुका है। हम देखते हैं कि तकनीक का उद्देश्य केवल मशीनें बनाना ही नहीं होना चाहिए बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं कि विज्ञान तभी सार्थक है साथियों जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपने लाभ पहुंचाए।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ छोटी मोटी है बातें, वो हम आगे निरंतर यूं ही श्रोता साथियों के साथ करेंगे, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी हाँ दिले जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास, वैज्ञानिक सोच और विकासशील भविष्य का प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: यह दिन हमें यह एहसास कराता है कि जब किसी देश के युवा वैज्ञानिक, शिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब असंभव दिखाई देने वाले लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: विज्ञान और तकनीक ने आज जीवन के हर क्षेत्र में नई दिशा दी है, चाहे गांव की खेती हो, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं का रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और देश की सुरक्षा। हर जगह तकनीक ने बदलाव की नई रोशनी फैलाई है।
1: बिल्कुल,
0: आज दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे समय में केवल वही देश आगे बढ़ पाएंगे कशिश, जो नई तकनीकों को अपनाने के साथ साथ खुद भी नवाचार करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे युवा नई सोच, ऊर्जा, सपनों से भरे हुए हैं। जरूरत केवल उन्हें सही अवसर, सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक वातावरण देने की है। यदि देश का हर युवा समस्याओं को लेकर शिकायत की नजर से देखने के बजाय समाधान खोजने की सोच अपनाएगा, तो भारत तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी, साथियों हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, गरीबों के लिए उपयोगी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुलभ बनाए, साथ ही समाज में समानता बढ़ाए।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि जी के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत की वैज्ञानिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और प्रगति का प्रतीक है। यह दिवस हमें उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के योगदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम विज्ञान और तकनीक को केवल आधुनिकता का साधन न समझें, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार माने, क्योंकि युवाओं को अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की ओर प्रेरित करने का समय आ चुका है। साथियों,
0: बिल्कुल
1: हमें तकनीक का उपयोग मानवता, पर्यावरण और समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए, क्योंकि जब विज्ञान और मानवीय संवेदनाएं साथ चलती है तभी वास्तविक विकास संभव होता है। अंजलि जी,
0: जी हाँ कशिश,
1: हम देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें यही संदेश देता है कि यदि देश के युवा, वैज्ञानिक और नागरिक मिलकर नवाचार की दिशा में कार्य करेंगे तो भारत दुनिया में तकनीकी महाशक्ति बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में दोस्तों यही कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि का आधार है। तकनीकी तभी सफल है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
0: बिल्कुल कशिश, इसके साथ यह भी जरूरी है कि तकनीक का उपयोग मानवता और समाज के हित में हो। ऐसी प्रौद्योगिकी का कोई महत्व नहीं जो केवल सुविधा दे लेकिन इंसानों के बीच दूरी बढ़ा दे। हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी श्रोता साथियों जो पर्यावरण की रक्षा करे, ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाए, गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाए और समाज में समानता को बढ़ावा दे। विज्ञान तभी सफल माना जाएगा दोस्तों जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें मेहनत, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। यह दिन बच्चों और युवाओं के मन में जिज्ञासा पैदा करता है कि वे केवल मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करने तक सीमित न रहें, बल्कि भविष्य की नई खोजों का हिस्सा भी बने। जब युवा वैज्ञानिक सोच अपनाते हैं कशिश, तब समाज अंधविश्वास से बाहर निकलकर विकास और जागरूकता की ओर बढ़ता है। आने वाला समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कह सकते हैं कि डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान का समय है। यदि भारत ने इन क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की तो वह केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि ज्ञान और नवाचार में भी विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें केवल अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करना नहीं सिखाता बल्कि भविष्य के लिए नई जिम्मेदारियां भी सौंपता है। इसलिए कहा जा सकता है कि विज्ञान और तकनीक किसी राष्ट्र की असली शक्ति होते हैं। जब तकनीक में संवेदनशीलता, नैतिकता और मानव कल्याण की भावना जुड़ी होती है तब वह देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें यही प्रेरणा देता है कि हम ज्ञान, नवाचार और आत्मविश्वास के सहारे एक मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हमारे साथियों को हम बता दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि दोस्तों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को
0: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है दोस्तों 9460051234। तो साथियों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ही। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोले साथियों जुगनी जुगनी। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं चनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता, रंजना साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वधवानी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। पंटपुर से है जाकिर मुलानी, सोमिया, सुभान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किन्नर, नितिन और मयंक शर्मा जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में।

पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच रायगढ़ बिहार से है। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, गीत के बोल है दोस्तों दोनों किसी को नजर नहीं आए। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे उमा राज, महेश उमा, दिनेश उमा जी, हितेश उमा और भूपेश उमा जी। जेल रोड खड़वा से है दुर्गा कुमारी जी, सपना जी और राकेश ताई जी। डुमराव से है लाल बहादुर जी, दिव्या जी, मास्टर अब्दुल जी सी। सहारनपुर से है महेंद्र यादव, दीपित यादव, यामिनी यादव और नरेंद्र यादव जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को? जिला बागपत से है आसिर अली खान, मोमित नाच, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। जिला खरगोना मध्य प्रदेश से है डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा मरवा, मास्टर समराज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच शिवाजी नगर खड़वा से ही। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोले ओढ़नी ओढ़ के नाचू। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम शिव, अक्षय सेन जी, और भी साथी सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को। उत्तर प्रदेश से है मोहम्मद फान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सरार, नरगिस खातून जी, और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। जिला भागपत से है जगमोहन श्री प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारतीय, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितुन जी। दिल्ली से रामनाथ जी प्रजापत, श्रीमती सोनम देवी जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमाउद्दीन, केसरुद्दीन जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

मस्तानापुरा से अंता भगत, अरुणा भगत, चैतन्य भगत, सुलक्षणा भगत जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच आर्य नगर कुक्का बिलाई से ही। फिल्म का नाम है मन की आंखें, गीत के बोले चला भी आजा रसिया। इस गीत के साथ साथ ये जुड़ना चाह रहे उत्तम सिंह जंगल, मोरसी जंगल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगल, नंदिनी जंगल जी, सुकरी कला से अमित जंगल, कुशल जंगल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगल जी। और इस गीत के साथ और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, हनुमानगढ़ राजस्थान से है विक्रम जी, सचिन जी, सतीश जी, योगेश जी। और इस गीत के अनुरोध करता है जवालनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विन विपुल जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, गश डुंडवारा से है शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, आनंद खान, फेनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच सरदाना मेराठ से ही। गीत के बोले साथियों, ए दिले नादान। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं अनिल जैन, जैन साहब, यमन जैन, मुस्कान जैन, मास्टर विजयम जैन जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। हरियाणा से ही जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत, लव प्रतीत जी, कमरजीत जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कृतपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी जी, जोगेशपुरी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों बोरखेड़ा से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पावर, दिशा कुशल जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना पटेल के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है राजा और रंक, गीत के बोल हैं तू कितनी अच्छी है ओ माँ। इस गीत की फरमाइश करता है चंदूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आरुषि श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित मोनू, मानस जी राज। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर, आरव और अर्पिता जी। पटेल नगर मालोद से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझुरिया, गीता रानी झंझुरिया, गंदीप झंझुरिया, गुरजू झंझुरिया और गुड्डू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंडपुर सिटी से प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, रीता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, बीबी वामिका वाणी जी थांदी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं यतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभप्रसाद जयसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जयसवाल। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेमांश जी कुमार चंदन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं ग्राम पंचायत कालगांव जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राजी यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी जी देशमुख। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हरियाणा से। फिल्म का नाम है दामिनी। गीत के बोल हैं गवाह है चांद तारे गवाह हैं। इस गीत की फरमाइश करते हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इस गीत की अनुरोध करता है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कोठरी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी जी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान। इस गीत की अनुरोध करता है जाखोत राजस्थान से संबुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बकाल बुलढाणा से नारायण हगे, कमला हगे, दिव्या हगे, जया हगे। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ रहे हैं नारायण एगले, राजकुमार जी खर्ची, आशीष महेकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम जी शाक्य। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं सम्यद मशरूम, साइना हसन, आक्सा, आफिया नाजिया, इब्राहिम जी, सदाम जी, अदीपहन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया जी। झारखंड से जुड़ रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गवाह है चांद तारे गवाह हैं। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है कच्चे दागी, गीत के बोल हैं मेरे बचपन तू जा तू जा। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरी प्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं चचेरी छत्तीसगढ़ से, शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संध्या कोलाम, संजय कोलाम, शिवम जी कोलाम। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इज़ार, नरजीत जी खातून। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दिल्ली से रेशमा अंसारी, शशिला अंसारी, रिहान जी अंसारी। लोनी से जुड़ना चाह रही नसीमुल इस्लाम, नोरिन जी, प्रकाश वीर राजपूत, अनुप्रिया चंद्रवंशी।

खड़वा से जुड़ रहे राकेश, पिंकी, दुर्गा जी। जालदर से जुड़ना चाह रहे हैं मीना कौर, संदीप कौर। जेल रोड रायगढ़ से जुड़ रहे हैं लालचंद मिश्रा, कुमकुम जी मिश्रा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंपा जी शाहू। इस गीत की अनुरोध करता है पुणे से पंकज वाड़ोदी, पंकज कुमार, आर्या, प्रियंका, चंद्रप्रभा वाड़ोदी। इसी बीच जुन्नाचार्य श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सोनू कुंभार, अर्चना कुंभार। पुलावली से जुड़ रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइसा सोनवने जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ बिहार से, उमा राज, रमेश उमा, दिनेश उमा, हितेश उमा, भूपेश उमा। जेल रोड खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी, सपना, राकेश दाई। डुमराव से जुड़ रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। सहारनपुरा से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से, बबलू शाहू, जामुन देवी शाहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या जी शाहू। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मेरे बचपन तू जा जा जवानी को ले आ। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे बचपन मेरे बचपन तू जा जा जवानी को लिया। इसी बीच अगली फरमाइश की ओर बढ़ना चाहूंगी श्रोता साथियों। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा से। फिल्म का नाम है फूल और कांटे, गीत के बोल हैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इस गीत की फरमाइश करते हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जी जाधव, संगीता जी जाधव। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, वितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, श्रीमती नंदाजी बोड़खे, हनुमान जी बोड़खे, उत्तम जी बोड़खे। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीना जी धाड़े, सप्रिल जी धाड़े। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरशब्द, गुरकीरत जी राहुल। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां। गीत के बोल हैं दिल बेकरार था दिल बेकरार है। इस गीत की फरमाइश करता है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंदना, वंदना प्रियल, दिव्यांशी जी विश्वकर्मा और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। कुरुक्षेत्र से दीपक सोनी, प्रमिला अनुश्री सोनी, महादेव पारा से जुड़ना चाह रहे हैं मीरा सिमरन, योगेश कुमार राजवाड़ी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम नोरीन जी, प्रकाशवीर राजपूत। भालू से जुड़ना चाह रहे हैं कमलेश जी पुरिया, चंद्रनगर से जुड़ रहे हैं रजनी सिंह चौहान, पिंकी दुर्गा कुमारी जी। जेल रोड रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं लांचल मिश्रा, कुमकुम जी मिश्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां सिफा सिमरन नायरा और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौसाद अहमद सिद्दीक जी, बेगम हदमती सिद्दीक जी, विशान जिशान शाहनवाज और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। इस गीत की अनुरोध करता है डुमराव से वल्लेउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी। सरगुजा से जुड़ना चाह रहे विनोद थापा, पूजा रानी, विजय थापा। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं जानवी डोम, यामिन डोम, रोहित डोम। लाहौर से जुड़ना चाह रहे फर्जी हरिशंकर बेलदार, फर्जू प्रभा रानी बेलदार। रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं उमा राज, जगदीश राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिकाजी दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रही हैं अजीत सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, विशाखा सोनमने जी। इस गीत के अनुरोध करता है सरगुजा से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन। डोमिन परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं रमेश कुमार शाहू, मीरा देवी, गंगा देवी, मिश्री देवी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर से सीताराम मुन्नी देवी, लालसा मिसी, काजल जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है लैला और मजनू। गीत के बोल हैं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस गीत की फरमाइश करते हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांजी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुन्नाचार्य, खेल बाजार, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयू सिक्का, कुनेका सिक्का, डुगुजी सिक्का। इसी बीच जुन्नाचार्य है महाराष्ट्र से, रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेज जी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। भेड़ शहर महाराष्ट्र से जुड़ रही नंदकिशोर घटे, संगीता घटी, साक्षी घटे, जयश्री महलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू और पीपी कुतलेश जी। इसी बीच जुड़ना हैं सिंधी बुजुर्ग से, किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नू जी वड़तकर। इस गीत की अनुरोध करता है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणालजी मेहरा।

इस गीत की अनुरोध करता है काजगर से जाहिद अली सिफी, आबाद खान, जोहान सेफ, लीबा मलिक जी। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं जॉन डेकिस्टो, रोजे डेकिस्टो, पॉल डेकिस्टो, विलेज डेकिस्टो। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमर अफरीदी जी। इस गीत की अनुरोध करता है धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इस गीत की अनुरोध करता है काजगर से एस असलम सेफी, जुबनीशा बेगम, अकरम सेफी, सदाम सेफी, सोनी जी सेफी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इस गीत की अनुरोध करता है डुमराव से राज एडी अंसारी, नरसी अंसारी, वल्ली उल्लाजी अंसारी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं आजिम वक्कार जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। पंडपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़की। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वेदय जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती जयवंती केवट जी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं अब्दुल गफ्फा डावर जी। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और दोस्तों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागर रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय, काल। काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: बिल्कुल साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जो हर इंसान की जिंदगी में आता है,
2: बिल्कुल
1: वो है किशोरावस्था। यही वो उम्र है कशिश और मनीष, जब सपने साकार होते हैं, सोच बनती है और भविष्य की दिशा तय होती है।
2: बिल्कुल।
1: तो आइए श्रोता साथियों, आज हम बात करते हैं किशोर उम्र होती है खुद को संवारने की।
2: बिल्कुल जागृति जी, तो इस विषय को लेकर हमारी दोस्तों से ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले हम गीत सुनवाएं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे नए विषय को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं कि किशोर उम्र होती है खुद को संवारने के लिए। दोस्तों हम देखते हैं कि जिंदगी का हर पड़ाव खास होता है, लेकिन एक उम्र ऐसी होती है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। जागृति
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: और वो है किशोरावस्था।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, यह वो समय है जब हम खुद को पहचानते हैं, अपने सपनों को आकार देते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किशोर अवस्था आखिर होती क्या है।
1: जी बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि किशोर अवस्था जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण है जहाँ बच्चे धीरे धीरे वयस्कता की ओर बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: यह उम्र लगभग 12 से 19 वर्ष तक मानी जाती है।
0: जी,
1: इस समय व्यक्ति के भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर अनेक परिवर्तन होते हैं। यह वह दौर है श्रोता साथियों जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को आकार देता है,
0: बिल्कुल,
1: अपने सपनों को पहचानता है और अपने जीवन के रास्तों को तय करता है।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए श्रोता साथियों कहा जाता है कि किशोर अवस्था खुद को संवारने के लिए होती है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि किशोर अवस्था को जीवन की नींव रखने वाला समय कहा जाता है। जिस तरह किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है साथियों, उसी तरह व्यक्ति का भविष्य भी उसी उम्र में किए गए प्रयासों पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
1: इस समय में व्यक्ति नई चीजों को सीखने के लिए अधिक उत्सुक और ऊर्जावान होता है। जागृति जी, यही ऊर्जा यदि सही दिशा में लगाई जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। अगर बात करें कि किशोर अवस्था को इतना खास क्यों बताया जाता है, तो दोस्तों ये उम्र इसलिए भी खास है क्योंकि यही वो समय है जब आदतें बनती है।
1: जी हाँ,
0: यही समय है जब सोच विकसित होती है और यही उम्र है जब लक्ष्य तय होते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि यही उम्र है जब चरित्र का निर्माण होता है और अगर इस उम्र को सही दिशा मिल जाए तो जीवन सफल बन सकता है।
2: बिल्कुल कशिश, क्योंकि मानव जीवन कई चरणों में बंटा होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। इनमें से किशोरावस्था वो पुल है जो बचपन की सरलता और युवावस्था की जिम्मेदारियों के बीच जुड़ा होता है। यही वो समय है श्रोताओं जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की नींव मजबूत करता है, अपने सपनों को पहचानता है और जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए कहा जाता है कि किशोर उम्र खुद को संवारने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है।
0: जी बिल्कुल,
2: किशोर अवस्था हम कह सकते हैं कि लगभग 12 से 19 वर्ष की आयु के बीच का समय माना जाता है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तेजी से परिवर्तन होते हैं।
0: बिल्कुल,
2: शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मन में नए विचार जन्म लेते हैं। कशिश और मनीषा, भावनाएं अधिक संवेदनशील हो जाती है और ये बदलाव कभी कभी उपभ्रम और असमंजस में भी पैदा करते हैं।
0: जी हाँ,
2: लेकिन यही बदलाव व्यक्ति को परिपक्वता की ओर भी ले जाते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में सबसे बड़ा काम होता है खुद को समझना।
0: बिल्कुल,
1: इस उम्र में बच्चे यह जानने लगते हैं कि उसकी रुचियां क्या हैं,
0: बिल्कुल,
1: उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरियां क्या हैं। यह आत्मज्ञान श्रोता साथियों व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण के लिए जागृति जी और कशिश, अगर हम जाने कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई खेल में या कला में। इस उम्र में अपने हुनर को पहचान कर उसे निखारना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर इस समय व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर ले साथियों, तो आगे का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि किशोर अवस्था शिक्षा प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय श्रोता साथियों दिमाग तेजी से सीखता है और नई जानकारी को जल्दी ग्रहण करता है।
0: जी हाँ,
1: अच्छी शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती साथियों, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता भी हमारी विकसित करती है।
0: जी हाँ बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से बातचीत कर ही रहे हैं कि किशोर उम्र होती है खुद को संवारने के लिए, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे। आगे भी हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी कि किस प्रकार से किशोर अवस्था में ही अगर लक्ष्य तय कर लिए जाए तो इसके ढेर सारे फायदे होंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें और भी करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
1: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि किशोर उम्र होती है खुद को संवारने की,
1: बिल्कुल,
0: तो यही बात करते हैं कि किशोरावस्था वो समय है मनीषा और कशिश जब व्यक्ति खुद से प्रश्न पूछता है,
1: बिल्कुल,
0: मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, मेरी रुचियाँ क्या है।
1: यह
0: आत्मखोज की प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने में मदद करती है। जो किशोर इस समय अपने भीतर झांकते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं, वे आगे चलकर अधिक सफल और संतुलित जीवन जीते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: श्रोताओं, इस उम्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व तेजी से विकसित होता है। आदतें, व्यवहार, सोचने का तरीका सब कुछ इसी समय आकार लेता है। यदि किशोर सकारात्मक सोच अपनाएगा कशिश और मनीषा, तो अच्छे संस्कार वो ग्रहण करेगा और अनुशासन का पालन भी करेगा।
1: जी,
0: तो
1: हाँ।
0: इससे उनका व्यक्तित्व और मजबूत बनता है। वहीं यदि वे गलत संगति या नकारात्मक आदतों में पड़ जाए तो इसका प्रभाव जीवन भर पड़ सकता है।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों और संस्कारों का भी विकास होता है। यह वह समय होता है साथियों, जब सही और गलत की पहचान मजबूत होती है। माता पिता, शिक्षक और समाज इस उम्र में महत्वपूर्ण हमारे जीवन में भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान, सहानुभूति जैसे गुण इसी उम्र में विकसित होते हैं जागृति जी।
1: बिल्कुल।
2: अगर किशोर सही संगति में रहते हैं और अच्छे आदर्शों को अपनाते हैं तो उनका व्यक्तित्व और भी मजबूत और आकर्षण बनता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें लक्ष्य तय करने की कला की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव। दोस्तों, किशोर उम्र में ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए।
2: जी,
1: जैसे कि पढ़ाई में मुझे क्या करना है, कौन सा करियर चुनना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पर उन्हें पूरा करने की आदत भी हमारे अंदर इसी उम्र में आ जाती है।
2: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि किशोर उम्र आदतों की नींव रखने का सही समय है। अच्छी आदतें जैसे कि समय पर उठना, नियमित रूप से पढ़ाई करना, मोबाइल का सीमित उपयोग करना, किताबें पढ़ना और बड़ों का सम्मान करना। दोस्तों, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आगे चलकर हमारी पहचान बनती है। साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, तो इस उम्र में शरीर तेजी से विकसित होता है जागृति जी।
2: बिल्कुल।
1: इसलिए संतुलित आहार हमारे युवा साथियों को लेना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि किशोर उम्र जो होती है वो विकास की उम्र मानी जाती है।
2: जी हाँ।
1: ऐसे में अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि किशोरावस्था में भावनाएं बहुत तीव्र होती है, कभी खुशी होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी निराशा हाथ में लगती है, ये सारी भावनाएं जल्दी जल्दी बदलती है। ऐसे में जरूरी है श्रोताओं की किशोर अपनी भावनाओं को समझे और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखे। योग, ध्यान, खेल कूद और रचनात्मक गतिविधियां भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में ये सब चीजें मदद करती हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: साथ ही किशोर के विकास में परिवार की भूमिका बहुत जरूरी होती है मनीषा। माता पिता और बड़ों का मार्गदर्शन, समर्थन और समझदारी किशोरों को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: यदि परिवार का वातावरण सकारात्मक है, सहयोगपूर्ण है श्रोताओं, तो किशोर आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं।
2: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में कई तरह की चुनौतियाँ भी आती हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी दोस्तों का प्रभाव, कभी सोशल मीडिया का आकर्षण। श्रोता साथियों, ये सभी चीजें किशोरों को भटका सकती हैं। कई बार जागृति जी हम देखते हैं कि किशोर गलत संगति में पड़ जाते हैं या गलत आदतों को अपना लेते हैं, जैसे कि नशा करना, समय बर्बाद करना। श्रोता साथियों, ये सब उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, ये जरूरी है कि किशोर इन चुनौतियों को समझदारी से संभाले और सही निर्णय ले।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ अब बात आती है संवाद कौशल की।
2: जी
1: दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बात करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में अपनी बात स्पष्ट रखना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और सम्मान के साथ बोलना जागृति जी अच्छे संवाद को बढ़ावा दे सकता है।
2: जी हाँ।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छे संवाद से रिश्ते मजबूत बनते हैं।
2: बिल्कुल।
1: दोस्तों, जब कोई हमारी गलती बताता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन आपको बताएं तो सही आलोचना हमें बेहतर भी बनाती है।
2: बिल्कुल।
1: उसे आप सीख के रूप में ले, खुद को सुधारने का मौका समझे श्रोता साथियों।
2: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि किशोर उम्र में असफलता मिलना आम बात है जागृति जी, जैसे कि परीक्षा में कम नंबर आना या फिर किसी प्रतियोगिता में हार जाना। लेकिन ऐसे में हमारे किशोरों को ये ध्यान रखना है कि असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है कुछ नया सीखने की।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो व्यक्ति को हर कठिनाई से पार करने में मदद करती है, इसी तरह किशोरों को अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और हमेशा सकारात्मक सोच को अपनानी होगी कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। यही सोच उन्हें हर लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करती है। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि किशोरावस्था जीवन का वो अनमोल समय है जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। ये उम्र खुद को पहचानने, अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने सपनों को साकार करने का होता है, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बार बार बता रहे हैं।
1: जी जी।
0: यदि इस समय का सही उपयोग किया जाए मनीषा, तो जीवन सफलता, संतुलन और खुशियों से भर जाता है। इसीलिए हमारे श्रोता साथियों को कशिश हम यही कहना चाहेंगे कि किशोर उम्र केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि जीवन को संवारने का सुनहरा अवसर है।
1: बिल्कुल।
0: जो किशोर इस अवसर को पहचानते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं, वही आगे चलकर समाज और देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं।
2: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं कि किशोर अवस्था जीवन का महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण है। यह वह समय है साथियों, जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है, जैसा कि जागृति जी आपने बताया था। सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच, मेहनत और अनुशासन के साथ इस उम्र का सही उपयोग किया जाए तो श्रोता साथियों, व्यक्ति अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकता है।
1: बिल्कुल।
2: इसीलिए हर किशोर को यह समझना चाहिए कि यह उम्र केवल मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि खुद को संवारने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए है।
1: बिल्कुल।
2: जो इस समय को पहचान लेता है साथियों और इसका सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़कर एक सफल, जिम्मेदार और प्रेरणादायक व्यक्ति बनता है।
1: बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो श्रोता साथियों, ऐसे में याद रखिए कि आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसके लेखक आप खुद हैं। तो आज से उठिए, आगे बढ़िए और इस खूबसूरत उम्र को यूं ही मत जाने दीजिए।
0: जी हाँ,
1: इसे अपने सपनों की उड़ान बना दीजिए श्रोता साथियों।
2: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब आप खुद को संवारेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिए कि आपका आज का प्रयास ही कल की आपकी सफलता बनेगा।
0: जी हाँ, इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को सुनवा देते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से आपको जो बातें बताई वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी आशा के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति कार्यक्रम युवाओं की आवाज जाने के आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
3: नमस्कार।

0: बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है।
1: खेलने कूदने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है।
0: आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प। कोई भी बच्चा ना छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार।
2: वाग्धारा संस्था एवं वागर रेडियो द्वारा जनहित में जारी। जागृति बुन, आपके कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है।
3: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
2: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है स्कूल बस की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के नियमों को लेकर। आज के समय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: हर दिन लाखों बच्चे स्कूल बसों के माध्यम से अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते हैं। श्रोता साथियों, ये यात्रा जितनी नियमित है उतनी ही संवेदनशील भी है।
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी सी लापरवाही बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक बन सकती है, इसलिए स्कूल बस सुरक्षा नियमों का पालन करना केवल ड्राइवर या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अभिभावकों, शिक्षकों और स्वयं बच्चों की भी सामूहिक जिम्मेदारी होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरीके से कुछ सुरक्षा के नियम हैं जो हमारे बच्चों को पता होने चाहिए ताकि वे खुद की सुरक्षा कर सकें।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि जी, हमारे श्रोता साथियों से हम इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें आगे जरूर करेंगे, लेकिन जैसा कि हम दोस्तों को पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को पहले निभाते हुए साथियों को मनोरंजन करवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्कूल बस की सुरक्षा नियम और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल बस बच्चों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक परिवहन का एक माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: यह ट्रैफिक के दबाव को कम करती है अंजलि जी, बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाती है और माता पिता की चिंता को भी कम करती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अगर सुरक्षा नियमों का पालन न किया जाए तो यही बस दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल बस से जुड़े कुछ सामान्य खतरे हैं जिनके बारे में माता पिता को पता होना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि बस में चढ़ते उतरते समय गिरना, तेज गति या लापरवाही ड्राइविंग करना, सड़क पार करते समय दुर्घटना होना या फिर बस के अंदर अनुशासनहीनता होना, साथ ही ड्राइवर का ध्यान भटकना।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इन सभी खतरों को समझना और उनसे बचाव करना आज के समय में बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि स्कूल बस सुरक्षा के क्या नियम हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए होते हैं।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, इसके लिए ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए, उसे बच्चे के साथ व्यवहार की समझ होनी चाहिए, उसे ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, बस की गति निर्धारित सीमा में होनी चाहिए और स्कूल क्षेत्रों में धीमी गति अनिवार्य हो, ब्रेक, टायर, लाइट इनकी नियमित जांच हो, के साथ बस में प्राथमिक उपचार का बॉक्स भी होना चाहिए। श्रोता साथियों, छोटे बच्चों के लिए एक अटेंडेंस होनी बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके कि बच्चों की संख्या कितनी है और कितने बच्चे बस में सवार होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वह बच्चों को चढ़ने उतरने में भी मदद करे। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हमें घर पर बच्चों को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी देने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा चंचल और नटखट होते हैं। बहुत सी बार ड्राइवर कंडक्टर के बहुत ज्यादा ध्यान रखने के बावजूद भी बच्चे जो है इधर उधर धक्का मुक्की कर देते हैं, चलती बस से एक सीट से उतरकर दूसरी सीट की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें बच्चों को समझाना है कि जब बस चालू हो जाती है तो उसके बाद हमें हमारी सीट से नहीं हिलना है।
0: बिल्कुल।
1: खिड़की से मुंह भी बाहर नहीं निकालना है, हाथ भी बाहर नहीं निकालना है। कुछ ऐसी कशी चीजें होती हैं जो बच्चों को हमें दिखानी भी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं बस से स्कूल जाएं तब उन्हें पता चले कि बस के क्या नियम है और किस तरीके से उनका पालन करना हमारे लिए जरूरी होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें अब कि बच्चों के लिए सुरक्षा नियम क्या है, जैसे कि बस स्टॉप पर अनुशासन। दोस्तों, समय से पहले बस स्टॉप पर बच्चों को पहुंचाना जरूरी होता है। सड़क से दूर खड़े रहना और धक्का मुक्की न करना हम बच्चों को बताएं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही बस में चढ़ते और उतरते समय सावधानी भी जरूरी है। जैसे कि हम बच्चों को ये बताएं अंजलि जी कि जब बस पूरी तरह रुक जाए उसके बाद ही बस में हमें चढ़ना है।
1: जी जी।
0: साथ ही लाइन बनाकर चढ़ना उतरना है, सीट पर बैठकर ही यात्रा करनी है, खिड़की से हाथ सिर बाहर नहीं निकालना है जैसा कि आपने बताया था, और साथ ही कंडक्टर या फिर ड्राइवर को परेशान भी नहीं करना है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही बस के आगे पीछे भाग भाग कर कह सकते हैं कि सड़क पार नहीं करनी है, और हमेशा उतरते और चढ़ते समय बड़ों की मदद लेनी है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जैसा कि आपने बताया अंजलि जी कि बच्चे नटखट होते हैं, वो कई बार कुछ चीजें अपने हिसाब से करना ज्यादा पसंद करते हैं।
1: जी जी।
0: तो ऐसे में माता पिता के द्वारा बच्चों को बताया जाना चाहिए कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें बड़ों की मदद भी लेनी होती है।
1: बिल्कुल।
0: और स्कूल बस में यात्रा करना एक ऐसे ही कह सकते हैं कि चीज है जिसमें बड़ों की मदद की जरूरत होती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को हमें सुरक्षा के कुछ नियम बताने हैं।
1: बिल्कुल
0: नहीं दोस्तों, बच्चों को रोज सुरक्षा के नियम हमें सिखाते रहना है। छोटे बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने हमें जाना है, स्कूल बस की जानकारी हमें उन्हें देनी है कि ड्राइवर का नंबर और रूट क्या है, ये सारी चीजें हमें बच्चों को बतानी है और बच्चों को अजनबियों से सावधान रहने की भी सीख हम दें। इसी के साथ स्कूल की जिम्मेदारी है कि वे बसों का नियमित निरीक्षण करवाएं, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, ड्राइवर और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए।
1: बिल्कुल
0: कह सकते हैं श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटी कहानी को जानते हुए कि एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। कशिश वह रोज स्कूल बस से जाता था। एक दिन बस से उतरते समय उसने जल्दी में सड़क पार करने की कोशिश की।
1: जी हाँ।
0: तभी बस के कंडक्टर ने उसे रोक लिया और समझाया कि हमेशा बस के रुकने के बाद और ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए। कुछ दिन बाद उसी जगह एक और बच्चा बिना देखे सड़क पार कर रहा था, तभी राहुल ने उसे रोक लिया। इस तरह एक छोटी सी सीख कशिश एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी,
0: श्रोता साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सुरक्षा के नियम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी होते हैं। अगर कुछ नियमों की जानकारी हमें है, कुछ नियमों की जागरूकता हमारे अंदर है, तो ये सारी चीजें हमें अन्य बच्चों को भी बतानी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सुरक्षा पहले जल्दी बाद में, नियमों का पालन करना ही जीवन की रक्षा है।
1: जी हाँ।
0: सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा कहलाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्कूल बस सुरक्षा केवल नियमों की एक सूची नहीं है बल्कि जीवन की रक्षा का एक मजबूत आधार है। साथियों,
0: बिल्कुल
1: हमारे लिए समझना जरूरी है कि हर बच्चा अपने परिवार के लिए अनमोल है और उसकी सुरक्षा का किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। अंजलि जी, जब एक ड्राइवर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाता है और एक शिक्षक बच्चों को अनुशासन सिखाता है, साथ ही एक अभिभावक बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हैं और स्वयं बच्चे नियमों का पालन करते हैं, तभी एक सुरक्षित वातावरण बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये भी समझना होगा दोस्तों कि सुरक्षा एक आदत है जो बचपन से ही सिखाई जाती है। अगर बच्चे शुरू से ही नियमों का पालन करना सीख जाएंगे तो वे जीवन भर सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनकर रहेंगे। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि स्कूल बस हो या जीवन का कोई भी रास्ता, हम हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सुरक्षित बचपन ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि बच्चों की हंसी में खुशियों का संसार होता है, उनकी सुरक्षा में ही जीवन का सार है। नियमों का पालन, सावधानी का साथ, यही है सुरक्षित भविष्य की राह। बस में बैठो शांति से, मत करो शोर, सुरक्षा अपनाओ यही है जोर, छोटी छोटी बातें बड़ा काम करें, हम सब मिलकर सुरक्षित जहां बनाएं। क्योंकि श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बस की सुरक्षा हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सी बार अनजाने में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से माता पिता जो हैं बहुत ज्यादा अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी के समय में परेशान हैं।

0: कि हम किस तरीके से बच्चों को स्कूल भेजें, बस में क्या होगा, कैसे होगा, तो इन सारी चीजों के लिए हमें कुछ सुरक्षा के नियम है वो अपनाने होंगे,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर तो भेजना ही होता है। ऐसे में इन सारी चीजों का ज्ञान हमारे बच्चों को सुरक्षित बना सकता है। हमें ये समझना होगा कि दुर्घटनाएं अचानक नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी लापरवाही का परिणाम होती है।
1: बिल्कुल।
0: जब हम चलता है जैसे सोच को छोड़कर सुरक्षा जरूरी है को अपनाना है, तभी वास्तविक बदलाव आता है। बच्चों के सामने हमारा व्यवहार ही उनका सबसे बड़ा शिक्षक होता है दोस्तों। अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से इसे अपनाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: सुरक्षा का अर्थ केवल दोस्तों खुद को बचाना नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करना भी है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को सावधान करता है, जब एक अभिभावक दूसरे बच्चे की चिंता करता है, जब समाज मिलकर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, तभी एक सुरक्षित वातावरण तैयार होता है। इसलिए एक सुरक्षित सफर केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं होता है साथियों, बल्कि उस सफर में हर पल को सुरक्षित संतुलित बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: यदि हम आज से ही इस दिशा में कशिश कदम बढ़ाते हैं तो आने वाला कल न केवल सुरक्षित होगा बल्कि आत्मविश्वास और जागरूकता से भरा हुआ भी होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: बिल्कुल।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को।
1: नमस्कार।

0: बच्चे का पूरा हक। वाघा रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आप एक कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

0: મેન બોનું ગીત તો આશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણીમાન સ્વાગત કરું હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ગીત તકે પહેલાં આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હં કે પશુપાલન આપણે કરો હં તો એન તકી કયા કયા વ્યવસાયિક લાભ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકા. તો ભાઈ બોનું અણ વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહે પ્રમોદજી રોકડિયા સાહેબ. તો સબ તકી પહેલાં આપણે હમરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: વાગડ રેડિયો કે સભી સુનને વાલે આપ સભી કો બહોત બહોત નમસ્કાર.
0: સર, જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ પશુ ઓર ઉનકે વ્યવસાયિક લાભ કો લેકર. હમ દેખતે હૈ કે હમારે કિસાન ભાઈ બહેન ખેતી કે સાથ સાથ પશુપાલન કરતે હૈ પર બહોત સી બાર કુછ જાગૃતતા કી કમી કે કારણ ઉન્હે પશુઓ સે લાભ નહીં મિલ પાતા હૈ. તો એસે મેં આજ હમ કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે આપસે એ જાનના ચાહેંગે કે પશુઓ કા ક્યા મહત્વ હૈ ઓર ઉસકે વ્યવસાયિક લાભ કે લિયે હમારે કિસાન ભાઈ બહેન કોન કોન સે તરીકો કો અપના સકતે હૈ.
1: પશુઓ કી બાત જો અપન કરતે હૈ તો પશુ જૈસે કિસાનો કે સંબંધ મેં રખને વાલે હમ મુખ્ય રૂપ સે માનતે ગાય. ગાય હૈ, ફિર ઉસકે બાદ મેં ઉસકા બેલ હૈ, ફિર ભેંસ હૈ, ફિર હમ ચાહે તો બકરી હૈ, ભેડ હૈ, ફિર મુર્ગી હૈ. इस तरह से कुछ जो अपने प्रमुख जो पशु हैं जिसमें कि किसान कुछ व्यावसायिक लाभ लेकर उनका पालन भी करता है और उसके साथ में उसके अपना भी फायदा करता है और उन पशुओं के भी फायदा करता है. तो ये ऐसे पशु होते हैं जिसको अपन कैटल भी कहते हैं, है ना, कैटल जिसको कहते हैं. तो ये ऐसे पशु होते हैं जो किसान के मित्र भी होते हैं, किसान को उसका पैसा भी मिलता है और बदले में वो किसान को खेत को मिट्टी को वातावरण को बहुत कुछ देते हैं. तो इसमें जब अपन व्यवसाय की बात करें ना तो इसमें ज्यादा इसमें प्रमुख रूप से जो हम ये मानते हैं कि भाई गोपालन जिसमें हम जैसे गौशाला वगैरह कहते हैं, यानी गाय का पालन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है. गाय का अपन हमारे जो भारत के अंदर मानते हैं कि हमारी गौ माता क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि गाय के पालन से हमें बहुत ज्यादा लाभ होता है. गाय से हमें दूध भी मिलता है. गाय का प्रत्येक जो है गौमूत्र है, गोबर है, के आस पास रहने से उसके वातावरण में यानी बहुत फायदा होता है. जैसे अपन कहते हैं गाय का दूध, गाय का दूध पूरी तरह से देसी गाय है तो उसका पोषण युक्त होता है. गाय के दूध के अंदर विटामिन ए भी होता है और कई सारे और भी विटामिन बी का भी है पार्ट, कैल्शियम भी देता है, फास्फोरस देता है. तो ये गाय का दूध हमारे लिए अपने पोषण के लिए भी फायदा करता है. और गौ पालन, गौ बदले में हमें गौमूत्र भी देती है. गौमूत्र है एक, जैसे अपन कहते हैं देसी गाय, एक अनुमान है कि माना जाता है कि सब एक गाय प्रतिदिन 3 लीटर गौमूत्र देती है. और गोबर की है, गोबर का भी माना जाता है क्योंकि ये जो गोबर है वो भी हमारे खाद के लिए प्रयोग में आता है. गौमूत्र प्रयोग खाद में प्रयोग आता है. गोबर का प्रयोग जैसे अपन कहते हैं देशी खाद बनाना, FIM जो कहते हैं ना, फार्म यार्ड मैन्योर, तो उसको बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है. उसको बनाने के लिए गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है. गोबर अगर गाय का अपन कहते हैं तो पर डे लगभग 10 किलो का आसपास एक गाय गोबर करती है औसत रूप में, तो उसका प्रयोग होता है. अब जब देसी खाद बनाया जाता है तो उसके अंदर गोबर की मात्रा काफी होती है. गोबर की मात्रा, उसका गौमूत्र की मात्रा, कुछ पौधे के जो अवशेष होते हैं उसकी मात्रा, और इनका सबका अपघटन करते हैं पानी के मिलाकर. और उसका अपघटन करके, क्योंकि उसमें जो जीवाणु होते हैं उसमें जीवाणु पनपते हैं और वो गोबर को विघटित करते हैं. गोबर को विघटित करके वो इस तरह की खाद बनाते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है, पोटेशियम भी मिल जाता है. इसे जो अपन कहते हैं FIM देशी खाद, देशी खाद इसीलिए कि वो जब मिट्टी के अंदर उन खाद को मिलाया जाता है तो मिट्टी की पोषण तक जो बढ़ जाती है. तो इस रूप में गाय हमारे लिए व्यावसायिक रूप से काफी लाभदायक होती है. क्योंकि गाय जैसे भी अपन बता रहे हैं कि जब 10 किलो तो लगभग गोबर की दे रही है, 2.5 से 3 किलो गौमूत्र दे रही है और उससे देसी खाद बन रही है. और साथ में इसके प्रयोग से हम कई सारे जीवाणु खाद भी बनाते हैं.
0: बिल्कुल,
1: जीवाणु खाद में, क्योंकि जीवाणु का रहने का वो स्थान है. तो जैसे उसमें अपन कितने सारे ये जो कहते हैं ना कि भाई अपन ऐसी जीवाणु खाद बनाते हैं कि जिसमें कि कई बार बीज के उपचार के लिए भी काम आती है, कई बार पौधे के ऊपर छिड़काव के लिए भी काम आती है, कई बार उसमें जो अपने कीट लगते हैं पौधों के ऊपर उनको बचाव करने में, उनको नियंत्रित करने में भी वो काम आती है. तो इस तरह से गाय हमारे लिए सब तरह से काम आती है. गाय के साथ में हम जब कहते हैं बेल, बेल हमारे लिए सर विदित है कि बेल हमारे किस तरह से श्रम में लाभ देता है हमारे जो, क्योंकि अगर बेलों के पालन से हम जाते हैं कि बेल जोड़ी अगर हमारे पास है तो हमारे जितने भी खेती बाड़ी के कार्य है जैसे कि हल चलाना, निराई गुड़ाई करवाना, उसमें उसके ऊपर अपने गहाई करवाना, अपना अनाज निकलता है तो उसको किस तरह से कुटवाना, तो ये सारे बैल जोड़ी के काम होते हैं उसमें करते हैं। फिर बैल का जो ऊर्जा है उसको हम कुएं में से पानी निकालने के लिए भी काम में लेते हैं, और हमारे उसके बाद में जो जैसे कहते हैं अपन तिल में से घाणी वगैरह होते हैं ना, तो उसमें भी बैलों का प्रयोग किया था।
0: बिल्कुल।
1: तो ये हमारे डेली किसानों की लाइफ के अंदर डेली इन पशुओं का बहुत बड़ा रोल रहता है, और इनका प्रति क्षण हमारे लिए फायदे करता है। बैल वगैरह का जो हम खाते हैं अगर, और साथ में क्या करते हैं हम, जैसे हमारे जितने भी उनका भोजन वगैरह क्या है जो हमारा खेतों से निकला हुआ है, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सारे जितने भी पशु हैं ये सब शाकाहारी है।
0: बिल्कुल।
1: ये मांसाहार का प्रयोग नहीं करते, तो हमारे दैनिक जनजीवन में इन शाकाहारी पशुओं से हमारा जो इस्तेमाल किया हुआ इनका खाद है वगैरह वो भी सारा के सारा जैविक ही होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जितने भी शाकाहारी जीव है और शाकाहारी जीव हमारे साथ में भी रह रहे हैं, हमारा लाइफ के अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, उनका दूध से उनके जो भी अवयव हैं उनके जो भी पदार्थ हैं उसका हम निकलते हैं। डेयरी का अपन जानते हैं कि दूध से तो व्यवसाय का तो बहुत बड़ा रोल होता है, जगह जगह डेयरियाँ डेवलप होती है, अच्छी अच्छी गाय नस्ल की गायें हैं उनकी डेयरी बनाई जाती है और उसको दूध से बेच के और उसका अच्छा खासा लाभ भी कमाया जाता है।
0: जी
1: हाँ। इसी तरह से बेल का भी जिससे अपन ने बात करी कि बेलों का भी काफ़ी लाभ होता है, तो इस तरह से हम मोटे रूप में इन व्यवसाय का लाभ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर, जैसा कि आपने बताया कि पशुओं में गाय और बैल से किस तरीके से हमें फायदे होते हैं, वही हम देखते हैं कि बहुत से किसान भाई बहन मुर्गी और बकरी पालन भी करते हैं, तो उनसे उन्हें क्या व्यवसायिक लाभ होता है?
1: मुर्गियों और बकरी का पालन का, जैसे मुर्गियों से भी अब जैसे अपन मानते हैं कि अंडे वगैरह का प्रयोग करते हैं, वो भी एक विटामिन का बहुत बड़ा सोर्स होता है।
0: जी हाँ।
1: विटामिन ए है, विटामिन कैरोटीन से मिलता है जो काफी लाभदायक होता है। ऐसे बकरी का भी है, बकरी का भी दूध है, बकरी की जो खाद बनती है मेंगड़िया वगैरह है वो भी खेतों के उपजाऊ क्षमता बनाने के लिए काफी लाभदायक होती है। उससे क्या, और उससे वातावरण में भी काफी लाभ रहता है, उससे जो गर्मी है उनसे भी मिट्टी के अंदर जो एक वो उर्वरकता बनी रहती है, तो इनसे काफी हमें किसान भाइयों को लाभ मिलता है। बकरी है, भेड़ है, इसी तरह से अपने मुर्गियां हैं, तो ये पालन से किसान को व्यावसायिक लाभ तो होता ही है और साथ में वातावरण का भी लाभ होता है, मिट्टी का भी लाभ होता है, और जैसा कि अपन बताया कि ये सब हमारे जनजीवन के पार्ट हैं, इसलिए अपन कहते हैं कैटल्स हैं ये, डोमेस्टिक कैटल्स हैं, किसानों के मित्र हैं ये।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जैसा कि आपके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि पशुओं से हमें कई सारे लाभ होते हैं। यही पशुपालन करते समय हमारे किसान भाई बहनों को इन पशुओं के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
1: पशु का अपन जैसे कह रहे हैं कि भैया हमारे लाइफ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो इनकी बीमारी और इनके जो रख रखाव इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह जीव है, तो उसमें भी अगर कोई बीमारी लगती है तो उसको हमारे वेटनरी हॉस्पिटल से या डॉक्टर्स है उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। उनके अंदर समय समय पर टीके लगते हैं, कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है जैसे खुरपका रोग है जैसे गायों के अंदर, तो इसमें उनके पैरों के अंदर वो हो जाता है, तो उस वजह से उनके नुकसान होता है, तो ऐसे उनके टीके होते हैं, जैसे अपने बच्चों का लालन पालन होता है बच्चों के समय समय पर टीके लगते हैं, तो ऐसे एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर्स होते हैं पशु चिकित्सक उनका परामर्श से हम इसी तरह से टीकों का प्रयोग करते हैं। उनके रख रखाव में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके जहाँ रहने का जगह है
0: बिल्कुल
1: उसमें एक अच्छा खासा उनका वातावरण बनाया जाए, ऐसा तो नहीं कि उसमें गीला वगैरह हो रहा हो जिससे उसमें को रहने की उसमें दिक्कत आए। जितना भी नमी बनी रहेगी उसके कमरे के अंदर या उसके जब बांधने की जगह पे अगर बहुत ज़्यादा नमी है तो उसमें ऐसे जीवाणु पनपने का होता है जो पशुओं को नुकसान देता है। पशुओं को नुकसान होगा तो उसकी दूध की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी, उसको हमारे जो परिवार है उसमें भी उसकी बीमारी फैलने का खतरा रहता है, इसलिए उसका रखरखाव और उसकी बीमारी वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि किस तरह से उनका जो आहार का जो अपन कहते हैं मेंजर जो कहते हैं वो भी ऐसा होना चाहिए कि उनको जो आहार दें वो जो चारा दें वो भी हम अगर सीधा सीधा कई बार क्या होता है सीधा मक्की की कड़वी वगैरह है तो वो पूरे पूरे डंठल पकड़े दिए जाते हैं, तो डंठल उसको खिला दिए जाते हैं तो वो पूरी तरह से उसका वो पछता नहीं है, उसको पछता नहीं है और वो सारा सा बेकार चलाता है। इसलिए कहा जाता है कि साहब